0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वाह देखो गुरु नानक सचे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है। नानक मन समझाइए अपने मन नु समझाओ गुरु के शब्द सलाह और गुरु के शब्द पढ़िया करो गुरु की शब्द गल करिया करो गुरु का नाम जपया करो बस। नानक मन समझाइए अपने मन नु समझाइए की समझाइए गुरु का शब्द सलाह

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। ये जो बातें हम कर पा रहे होते हैं, एक संदेश दूसरी जगह हम पहुंचा पा रहे होते हैं, अखबारों के जरिए खबरों को हम पढ़ पा रहे होते हैं, टीवी के जरिए न्यूज को हम देख पा रहे होते हैं, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है, ये सब हो रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको कहा जाता है मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे होते हैं। तो इस चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के स्तंभ को हम दिल से सलाम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आज इसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो दो बड़ी खूबसूरत हस्ती हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं इसी विषय पर। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया है, भारत न्यूज 360 टीवी से आप हैं, और इनका जो परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हैं स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली एनसीआर और इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: आप परिचय में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही हैं।
0: अनन्या जी आपको देख रही थी, मुझे भी देख रही थी। चलिए, दूसरी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी मैं परिचय आपको देना चाहूंगा। मेरे साथ हैं आप भारत न्यूज 360 टीवी से, आप हैं ब्यूरो चीफ एंड ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया गगन जी।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हरफन मौला हैं, आप पेशे से एक एंकर भी हैं, बहुत सारी भूमिकाओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अपने चैनल के साथ आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो सर, आप पहले मुझे बताइए कि सुरो शारदा के इस प्रांगण में, रेडियो एफएम में आकर मुझसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन।
0: थैंक यू।
1: बहुत अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
0: ये तो आपका प्यार है और जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बिरादरी के हो गए ना, वैसे तो बिरादरी हम तीनों की एक ही है,
2: जी,
0: लेकिन एंकर कुछ तारीफ तो कर ही सकते
2: हैं। अपनापन आता है जब आप अपनी बिरादरी से मिलते हैं, और आप डेफिनेटली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए, बहुत खूबसूरत, यानी कि औपचारिकताओं से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास क्या खास है, यानी कि पत्रकारिता के बारे में हम बात करेंगे, वर्तमान पत्रकारिता और पुराने समय की जो एक अंतर है, हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे आजकल जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ माइक लोग लेकर निकल जाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ABCD उनको पता नहीं है, बहुत सारी बातें डिटेल में होंगी हमारे दो खास मेहमानों से। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समुदाय की बातें करें, अपनी बातें करें, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। जी हां, आज एक विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वर्तमान पत्रकारिता के बारे में जानेंगे और प्राचीन समय में इसकी क्या रूपरेखा थी उसके बारे में जानने समझने के लिए मैंने स्टूडियो में दो खास मेहमान को इनवाइट किया है। भारत न्यूज 360 टीवी से आप हैं मेरे साथ एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: सर सवाल मेरा ये है और मैं समझना आपसे चाहूंगा कि आप क्या महसूस करते हैं अगर हम देखें कि आज की जो जर्नलिज्म है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पत्रकारिता और पुराने समय की पत्रकारिता में क्या आप अंतर महसूस करते हैं?
1: गगन जी, ये जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही खूबसूरत भी है और बड़ा विवादित प्रश्न है, जो कि जैसे हम पत्रकारिता की बात करें कि उसको आपको पहले जाना पड़ेगा संविधान में। आप उसमें देखेंगे कि पत्रकार और पत्रकारिता को इस तरीके से रखा गया कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहते हुए अपनी बातों को कह सकें, अपनी बातों को रख सकें। शायद यही एक रीज़न है कि संविधान में या उस पूरे के पूरे तंत्र में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं रखा गया कि क्या एक पत्रकार की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या जो है किस तरीके से पत्रकारिता, मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को किसी खबर को पहुंचा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं तो आप और रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो आप ऐसे पत्रकार हैं
0: जी।
1: अब पहले की पत्रकारिता की बात करें तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, चूँकि रिसोर्स नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और आज की पत्रकारिता की बात करेंगे तो आज हम AI के युग में हैं, ChatGPT से लेकर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए रिसर्च करना बहुत सब चीज़ें बहुत आसान हो गए आसान हो गई हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी इसी चीज़ों ने जो है बहुत सारे चैलेंजेस को भी जन्म दिया। अब हम बात करें कि ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं, ऑथेंटिक पत्रकार किसको कहते हैं।
0: मैं इसी बात पर आता, बिल्कुल इसी बात को मैं आपसे जानना समझना चाह रहा था कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ पहले लोग काम किया करते थे, आज वो चीज कहीं ना कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से वो सम्मान, आप यकीन मानिए आप मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं हम खोते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी फिल्मों में हम देखा करते थे एक पत्रकार जब जाया करता था तो बड़े बड़े अधिकारी अपनी सीट छोड़ दिया करते थे उस पत्रकार के लिए, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपनी कलम के जरिए लोगों को जगाने का काम करता था। आज चंद रुपयों के लिए हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही हैं हमारे समाज में। तो इसके बारे में जो आपने कहा ऑथेंटिसिटी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा। मैं अनन्य आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, सवाल मेरा वही है, आप क्या सोचती हैं, आपका नजरिया क्या है?
2: सर जैसे कि बताया संदीप जी ने कि पहले काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थे, उतने साधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास में, तो किसी भी एक स्टोरी करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। बस आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, हम आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो अभी स्किल्स तो हमें डेफिनेटली है कि AI के जरिए हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है, बट हाँ चैलेंजेस अभी भी वही है कि अगर आपको ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करनी है तो उस पे आपको बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है।
0: राइट, जो बात आपने मुझे बताई सर ने भी वही बात की, अगर मैं इसका समराइज करूं, निष्कर्ष निकालूं तो जो पैरामीटर्स हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक ईमानदारी है, उसका एक मापदंड क्या है, वो क्या क्या नियम कायदे कानून है जिसके तहत एक पत्रकार आगे बढ़ सकता है, अपने समाज में जनचेतना ला सकता है, और अगर वो चीज़ें नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके कलम से निकले हुए शब्द बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बात हम कर रहे हैं बिंदास, सुबह में बिंदास बातें हो रही हैं, बिंदास बोल हो रहे हैं, और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं विषय बड़े ही खूबसूरत है। और 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में आप हैं संदीप तिवारी जी और अनन्या ठाकुर जो कि ऑपरेशन हेड हैं इसी चैनल में। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: तो सर मैं आपको रोका था उस वक्त क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब अब आपसे जानना चाह रहा था। ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रहे थे अनन्या, उसके मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं।
2: देखिए गगन जी, अगर हम पत्रकार और पत्रकारिता की बात करें तो मेजर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या है
0: जी,
2: पत्रकार और पत्रकारिता जो है जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि समाज में या जो है तंत्र में गलत हो रहा हो तो उस पर क्वेश्चन करें, सही हो रहा हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें, लेकिन उसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी होता है। और रही ऑथेंटिसिटी की बात, तो उसके बहुत सारे जो है मापदंड हैं और बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है तो अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज, ध्यान सुनिएगा गगन जी, अगर गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करती है तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं? जहां से जिस पेपर में या जिस सर्टिफिकेट से आपको पत्रकार, मुझे अगर पत्रकार कहने का सर्टिफिकेशन अगर सरकार देगी तो सरकार में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ या कैसे बोल सकता हूँ? इसीलिए संविधान में ये कोई प्रावधान डाला ही नहीं गया। आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर होती है संविधान में, कोई भी चीज़ दी गई तो उसके मिसयूजेस भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर उसका अमेंडमेंट करना चाहिए। अमेंडमेंट करके इस चीज़ को, अब जैसे मैं बड़ी बात बताऊं कि डिजिटल पॉलिसी की बात करें हम
0: जी,
2: पत्रकारों की पत्रकारिता के या पत्रकार की डिजिटल पॉलिसी है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हुए थे उसी टाइम पर उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, और ये बड़े कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि आज इतने सालों बाद भी डिजिटल मीडिया का आज तक कोई भी रूपरेखा या कोई भी चीज़ ऑथेंटिकेशन आज तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई
0: जी। ठीक है,
2: आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या प्रोसेस है, क्या है, आज तक कोई डिफाइन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को त्वरिता से काम करने की ज़रूरत है।
0: बहुत अच्छा।
2: और रही बात ईमानदारी की सर, तो ये तो एक प्रत्येक विषय मतलब व्यक्ति विशेष की वो है कि उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। रही बात बेईमानी की, तो बेईमान पत्रकार पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, लेकिन उससे पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी को नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आपको सही चीज़ों पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आज की अगर हम बात करें गगन जी, एक बहुत चीज़ देखने को मिलती है कि हम कहीं ना कहीं पत्रकार ना होकर, पत्रकारिता ना होकर, हम कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज की डेट में क्या हो गई है, आप कुछ आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं और बोल के उसको हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बाइट लेके चले जा रहे हैं, जबकि हमारा कर्तव्य क्या बनता था कि आप बोल रहे हैं तो उस पर मैं क्वेश्चनिंग करूँ, काउंटर क्वेश्चन करूँ, मैं पूछूँ ऐसा क्यों हुआ जी?
0: जी
2: हम क्यों नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब जो आपने कह दिया उसी को हमने दोबारा एक अपने कैमरे पर ले जाकर हमने दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत वो है कि उस पे हमें जो है काउंटर करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है जब जब क्वेश्चंस होते हैं और वो कहीं निगेटिव नहीं होता। आप क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि वो आपका जो भी क्वेश्चन है वो सत्ता पे बैठे शिखर पे जो लोग हैं उन तक पहुंचे, और कहीं कुछ कमियां हैं सिस्टम में तो उसको ठीक की जाए।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और इस बात को मैं जानना समझना चाह रहा था, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी समझना चाह रहे थे कि आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बातें की हैं जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानूंगा, और साथ ही साथ अनन्या आप क्या इस पर कहना चाहती हैं, आपसे भी जो आपने मापदंड का जिक्र किया वो बातें मैं आपसे ज़रूर करूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Don't go anywhere. Stay tuned on your Surushada 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ। आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र के महारत हासिल हैं, और आप भारत न्यूज 360 टीवी चैनल से आप आते हैं। आप हैं संदीप तिवारी जी जो कि एडिटर इन चीफ हैं, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ बिंदास। सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही है और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनन्या जी जो कि भारत न्यूज 360 टीवी से आप आती हैं, ऑपरेशन हेड आप करती हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी। तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: अनन्या। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जो आप बात कर रहे थे कुछ मापदंडों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में आप बात कर रहे थे पत्रकारिता के बारे में, तो सर ने जो बातें रखी हैं उसके अलावा अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो आप प्लीज हमें बताइए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आज के युवाओं में आप देख रहे हैं कि जोश तो बहुत देखने को मिलता है, वो पत्रकारिता करना भी चाहते हैं सही तरीके से। तो अगर अभी करंट के आपको कुछ केसेस याद हो पत्रकारों पे, उत्तराखंड के राजू हो गए या छत्तीसगढ़ के हो गए, तो उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की और भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर भी किया। तो एंड ऑफ लास्ट आपको उस पे न्यूज भी मिली होगी कि कहीं ना कहीं उनका मर्डर हुआ, एक्सीडेंटल दिखाया गया। तो ये चीजें काफी इफेक्ट भी करती हैं हमारे यूथ को, खासकर हाँ मेंटली डिस्टर्बेंस करती हैं। तो अगर वो चाहते भी हैं ईमानदार पत्रकारिता करना, तो कहीं ना कहीं वो जो अभी आज का टाइम चल रहा है कि जो अभी सिस्टम में चल रहा है आप उसी को दिखाइए, तो कहीं ना कहीं यूथ इससे घबरा भी रहा है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं ईमानदारी से करें, जब तक आप स्टेबल नहीं है तब तक आप खुल के कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। आप जो सामने वाला बोल रहा है आपको सुनना है, वही आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं तो उसके लिए आपको या तो बड़े लेवल पे आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके बैक बोन्स बहुत मजबूत होने चाहिए, देन उसके बाद आप किसी स्टैंड के लिए आप खड़े हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आज के यूथ के लिए, खासकर क्योंकि वो बहुत जेंजिस का टाइम चल रहा है, तो जेंजिस को एक पेशेंस लेवल भी नहीं है और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं जो उसके साथ में, जैसे अभी आपने देखा जेंजिस ने एक नेपाल में
0: क्रांति ला दी।
1: तो राइट सेम चीज यहाँ पे देखने को।
0: मैं आपकी बात को समझ गया। अनन्या ने एक दूसरी तरफ इशारा हमें कर दिया है और वही वाली बात है कि पत्रकार जब आप हैं तो बातों में से बातें निकलेंगी ही। इन्होंने इशारा कर दिया कि जिस तरीके से उत्तराखंड का एक एग्जांपल इन्होंने हमारे सामने रखा, तो ऐसा क्यों होता है कि वो एक पत्रकार अकेला पड़ जाता है, उसकी आवाज को बुलंद नहीं किया जाता, सब साथ मिलकर नहीं चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकला चलो रे, और उसके बाद वो चीजें ठंडे बस्ते में पड़ जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं डर का माहौल हो जाता है कि अगर मैं इस तरीके की पत्रकारिता करूंगा और बेबाक बोलूंगा, सच दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि उसको डर रहेगा कि मेरे साथ नुकसान हो सकता है। उसे डर इस बात का भी रहेगा कि मेरे पीछे कोई है नहीं, यानी कि वो बिरादरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पत्रकार बंधु। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से
2: गगन जी? ये तो होता है। देखिए, आप जब भी जो है रिपोर्टिंग करेंगे, स्पेशली जो है करप्शन के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ, तो खतरा तो आप पे रहेगा सर
0: जी।
2: यही तो मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इस चीज़ की चेंजिंग्स होनी चाहिए। आप ये समझिए जो है कि आप जो ये पत्रकार या जो है जो मीडिया सेक्शन है, वो एक सेटअप बहुत महंगा सेटअप है, करना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
2: ये बहुत आसान काम नहीं होता। आप उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, अपनी टीम के एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, तो कहीं ना कहीं जो है आप इसको किस तरीके से आप करेंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे कुछ कंट्रीज में होता है कि एक फंड होता है जिससे जो है मीडिया हाउसेस जो चलते हैं वो उसको इंडिपेंडेंटली दिया जाता है। अभी क्या है कि जैसे एग्जांपल समझिए कि किसी भी मीडिया हाउसेस की बात करें, किसी स्पेसिफिक का नाम हम नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पावर के खिलाफ बोलना या कहना जो है। हाँ, लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, सब कोई काम करते हैं, लेकिन देखिए जब भी आप कभी भी किसी क्रिमिनल का या किसी पे वर्किंग करेंगे तो वो अटैक करेगा आपके साथ, हो सकता है। तो ये देखिए एक क्रिमिनल माइंडसेट है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पत्रकारिता करना जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ये साथ में लेकर आते हैं। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप इस सोच के जाते हैं कि आप क्राइम के क्रिमिनल के खिलाफ बोलेंगे तो आप ये कुछ करेंगे तो हो सकता है कि गोली आपके नाम पर हो। तो देखिए इसीलिए एक बात और बताऊंगा गगन जी, इसीलिए आपको एक अलग स्थान भी मिला है। आप एज अ जर्नलिस्ट हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका एक अलग सम्मान होता है, एक अलग प्रेशर फील होता है, सिस्टम पे खड़े होते हैं बोलते हैं, तो उस जगह को पाने के लिए आपको सर बस कीमत भी देनी पड़ती है, रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो
0: आपकी बात बहुत सही बात आपने की है और सही एग्जांपल भी आपने दिया है कि चाहे वो मिलिट्री हो, पुलिस हो या किसी भी क्षेत्र में आप जब जा रहे हैं तो चुनौतियां तो आती हैं और इस तरीके की चुनौतियां भी आती हैं कि कभी कभी आपको जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
2: तरीके से
0: पास्ट में घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि कभी कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उसके साथ जो उसके बिरादरी बंधु हैं कुछ चल पाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आती है, तो मैं उस चीज़ को अगर आपसे समझूं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसा कभी भी ऐसा हुआ है तो आपने अगर देखा होगा तो वहाँ के जो लोकल संगठन हैं वो सब संगठन कुछ ना कुछ इस पर काम करते हैं। जो पत्रकारों के संगठन होते हैं वो उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और ये लगभग देखा गया है कि अगर पत्रकारों पे कभी अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो उस पर जो है एक्शन होता है
0: जी।
2: ये बात की बात है, उसके जाने के बाद होता है, उनके जाने के बाद ये होता है। तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेकर, कुछ दे चाहे नहीं दे, आप जो है पत्रकारों के प्रोटेक्शन में आप उस पर कुछ करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर कि भाई आपको मतलब चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, वेपन्स प्रोवाइड कीजिए, जैसा भी कीजिए। और इससे देखिए बात वहीं आके फिर फंस जाएगी कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो सबके लिए करेगी, और सबके लिए करेगी तो पहली बात तो यही डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन एक्चुअल पत्रकार और कौन नहीं पत्रकार। अब गवर्नमेंट अगर एक्चुअल पत्रकार की कोई मापदंड लेकर आए तो यहीं से एक आवाज उठेगी कि आप अगर मुझे सर्टिफाइड करोगे तो आपके खिलाफ मैं बोलूं कैसे। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग।
0: कुछ लोग तो कैसे निकाले, प्राप्त पत्रकार तो होते हैं सर।
2: अब आप बताएं सर ना कि मान्यता प्राप्त, वर्ड सुनिए, मान्यता प्राप्त, कौन मान्यता दे रहा है?
0: आई थिंक वही जो आप कह रहे हैं,
2: गवर्नमेंट दे रहा है। तो सर एक बात बताइए, अगर मान्यता गवर्नमेंट दे रही है, आपने सर आज तक देखा है कोई सरकारी अधिकारी अपने विभाग के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा हो?
0: ये बात
2: कैसे दे देगा?
0: सही बात।
2: सैलरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसके खिलाफ वो कैसे बोल सकता है?
0: गवर्नमेंट मुलाजिम है वो।
2: तो अगर आप गवर्नमेंट, आप मुझे जो है मान्यता दे रहे हैं, मान्यता मीन्स कि आप मान्यता दे रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर अगर आपने मुझे मान्यता दे दी तो फिर आप पे मैं क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकता हूँ? और मेरा सबसे परम कर्तव्य यही है कि मैं आपके सही एंगल को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन गलत एंगल को दिखाना बहुत जरूरी है, तभी उसमें चेंजेस आएंगे।
0: राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही। सो लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि आप जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कमर कस कर आप आइए और अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए, और निश्चित तौर पर सुनवाई होती है, बात निकलेगी तो दूर तलक ज़रूर जाती है, उसका असर भी होता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता के जो चेहरे हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदलती हुई नज़र आ रही है, ChatGPT हमारे सामने है, AI हमारे सामने है, नए नए लोग आ रहे हैं अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, कुछ इस तरीके के सवालों के जो दौर है वो ज़रूर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे ज़रूर जानेंगे, समझेंगे कि क्या करें क्या ना करें इस समय। तो वक्त है अपन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक पर मैं बात कर रहा था अपने खास मेहमानों से कि बातचीत इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है कि समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। स्टूडियो में खास मेहमान हैं, आप हैं भारत न्यूज 360 टीवी से एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, और साथ ही साथ हैं अनन्या ठाकुर जो कि ब्यूरो चीफ और ऑपरेशन हेड हैं इसी चैनल से, यानी कि भारत न्यूज 360 टीवी से। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा विषय है, पत्रकारिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके सकारात्मक पहलू के बारे में। कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं वो भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि आपने ईमानदारी की बात की, आपने बात की कि कुछ एक मापदंड होना चाहिए कि कौन पत्रकार है या नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर जब अपने आप को पत्रकार कह रहा है उसको ABCD नहीं पता। आपने बहुत अरसा इस फील्ड में दिया है, नज़दीकी से काम किया, धरातल पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है, लोगों को आप जानते हैं समझते हैं, तब आप पत्रकार बने हैं। लेकिन लोगों की कैसे आत्मा गवारा करने को ये कह देती है कि मैं पत्रकार हूँ, जबकि उनको कुछ पता नहीं होता, और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि उनको वो सम्मान भी नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़िए कि वो अक्सर समाज में पिटते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, और बाकी आप मुझे करेक्ट करेंगे क्या सही है क्या गलत है।
2: देखिए सर, मैंने आपको एक बात बताई कि सही और गलत ये दो लोग जो है या दो चीज़ें हर एक प्रोफेशन में हर एक जगह पाई जाती हैं। उसको सही करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग। अब हम बात करें जिसकी बात बार बार हो रही है कि यूट्यूबर, और यूट्यूबर हैं वो मीडिया पर्सन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, अब आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग्स, बड़े अधिकारियों के उसमें देखिएगा तो मतलब डर्जन्स ऑफ माइक आईडीज लगी होती हैं
0: जी।
2: और जितनी ज़्यादा माइक आईडी का जमावड़ा होगा उतना बड़ा उसका मीडिया प्रेजेंस है। तो क्या उस समय चेक किया जाता है कि ये यूट्यूबर है कि नहीं है? आप चेक करते हैं, आप चेक नहीं करते। आप चेक तब करते हैं जब वो आपके खिलाफ बोलना स्टार्ट करता है। मैं जानना चाहता हूँ आप पहले क्यों नहीं चेक करते? आपको सिस्टम में हर चीज़ पता है ना, सिस्टम बना हुआ है ना। कोई जैसे सपोज कीजिए कोई व्यापार कर रहा है, वो अफीम या गांजा बेच रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करने का आपके पास सेल है ना
0: जी।
2: तो आपके पास सेल है ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप पहले क्यों नहीं करते? जितने भी पत्रकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है आप उसमें ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आज से काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी मुझे आज तक ऐसा केस नहीं मिला कि जिसको ये पता हो, जिसमें ये लग रहा हो कि वो आज आया और दो दिन या चार दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर कोई आरोप लग गया। ये आपको पता चलेगा तो कई साल से काम कर रहा है, उस जिले में काम कर रहा है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सर, जो एक नॉर्मल तरीके से रखा गया था
0: जी।
2: ये रखा गया था कि आप जो है, जैसे सपोज कि मैं एडिटर इन चीफ हूँ, हम अपने यहाँ किसी रिपोर्टर को हायर करते हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए देते हैं, तो हम एक DIO को लेटर देते हैं। DIO को लेटर देकर हम ये बताते हैं कि हमने आपके क्षेत्र में इस बंदे को एज अ रिपोर्टर रखा है, वो आपके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अटेंड करने के लिए अधिकारी हमारी तरफ से नॉमिनेट है और वो करेगा, और उसकी IDs वगैरह हम उसमें डाल देते हैं
0: जी।
2: इस तरीके से अच्छा, उसकी एक कॉपी उनके पास जाती है, एक DM के पास जाती है, एक पुलिस में जाती है
0: जी।
2: तो सर क्या आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है।
0: बहुत अच्छी बात है।
2: अगर हर एक चीज़ें टाइम से होने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ कंट्रोलिंग में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने वही एक बात कही कि बात वहीं आकर रुकेगी कि जब ये बात होगी कि आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये पत्रकार है कि नहीं, क्या सिस्टम डिसाइड करेगा? और अगर सिस्टम डिसाइड करने लगा, मतलब गवर्नमेंट अगर डिसाइड करने लगी कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है, तो एक बात बताइए, इसके मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठेगी कैसे? अगर आपने कहा कि ये पत्रकार है तो वो पत्रकार कैसे बोल देगा कि ये चीज़ गलत है या सही? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और जो पत्रकार बंधु हैं, जो सीनियर बंधु हैं, या जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो पत्रकारों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक राउंड द टेबल बैठ के इस पर काम करने की ज़रूरत है, चूँकि कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता पर चोट तो है
0: जी। चूँकि ये बात को मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इसको अगर

0: तो कैसे आप काम करोगे? फिर तो आप एज अ जर्नलिस्ट रहे ही नहीं ना, आप तो इवेंट मैनेजमेंट हो गए, इवेंट मैनेज कर रहे हैं. तो देर इज अ लॉन्ग डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है कि एक आप खड़े होकर, जैसे सपोज कीजिए आप एंकरिंग करते हैं सर, शादी की एंकरिंग करते हैं, तो जो होता है उसको आप बताते हैं किस तरीके से इवेंट हो रहा है. बट एज अ मीडिया चैनल अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर उसकी बैक डोर पे क्या हो रहा है उसको आप निकाल के लेकर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं ये जो दिख रहा है इसके पीछे भी ये चीज है, उस कहानी को आप बताएंगे. जो मुझे लगता है
1: बहुत खूबसूरत, आपको जो लगता है बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बातों से मैं भी यूं समझ लें कि दो चार हो रहा हूँ, मैं भी समझने का एक मौका मुझे मिल रहा है. बहुत अच्छी बातें आपने कही, और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो समाज में जरूर अच्छी अच्छी बातों को प्रसारित करिए, उनको प्रचारित करिए, लेकिन बहुत सोच कर समझ कर तोल मोल कर बोलिए. क्योंकि वर्तमान समय में हम ये भी देखते हैं कि ये हमारा संविधान का अधिकार है, हमारी आजादी, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक बोल से कहीं बात बन भी सकती है, कहीं बात बिगड़ भी सकती है. अनन्य खामोश है, अनन्य से हम जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि यूथ की आवाज यानी कि चैट जीपीटी और एआई के समय में हम क्या करें क्या ना करें. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे गगन के साथ.

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ भारत न्यूज 360 टीवी से। आप हैं एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है अनन्या ठाकुर इसी चैनल से जो की ब्यूरो चीफ और ऑपरेशनल हेड है। तो मैडम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है। पुराने समय में हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे, एक अनुभव के आधार पर हम काम किया करते थे। आज के समय में आप क्या देखती हैं, ये कितना सही है कितना गलत है चैट जीपीटी एआई?
1: एआई का अगर देखें गगन जी तो यूज बहुत अच्छा है अगर आप उस पे, क्योंकि पहले होता था मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, एक एक वर्डिंग आपको चूज करनी पड़ती थी। अभी आप प्रॉम्प्ट डालते हैं एआई में, आपको चीजें निकल के आ जाती हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ जो आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में लगा पा रहे हैं, आप मैनुअली से सीधा आप इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हम अपने माइंड का यूज बहुत कम कर पा रहे हैं, जिससे

0: हमारा कहीं ना कहीं स्किल है वो दबता जा रहा है। आज का यूथ बहुत फास्ट चीजें ग्रो करना चाहता है, जो कि उस पे अपने माइंड का बिल्कुल वो यूज ही नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट कि जैसे कि हम पहले देखते थे, हम सारी रात बैठ के स्क्रिप्टिंग करते थे, कल हमें क्या कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कौन कौन से इंटरव्यूज करने हैं, उसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे होते थे। अभी क्या होता है कि उनको पता है एआई करना है, उनको रेडी है, पहले से माइंडसेट उनका क्लियर है, प्रॉम्प्ट डालना है उनके लिए, स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो एआई एक तरीके से हमारे लिए बहुत स्मूथ है, हम अगर उसका अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें पर डे की न्यूज आप देखते हैं, तो पहले क्या होता था कि चीजों को एक समराइज करना पड़ता था, चीजों को बहुत कैलकुलेटिव चीजें करनी पड़ती थी, और अभी एआई में वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास आ जाती हैं। रिसर्च में बहुत हेल्प हो रही है कि अगर हमें किसी का भी व्यक्तित्व जानना है, किसी के बारे में रिसर्च करनी है, बहुत पहले कि अगर हमारे पास कोई पेंडिंग केसेस है, हमें उसका प्रॉपर अगर जानना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो वो हमारे लिए बहुत स्मूथ हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है।
1: वेरी गुड। और साथ ही साथ लिसनर्स, मैं कुछ बातें यहाँ जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है इसका एक जो दूसरा पहलू है कि लोगों की जॉब्स भी गई हैं। एआई आपसे ये भी कह रहा है कि इसके बारे में जानिए, पढ़िए, कोर्स करिए, तो निश्चित तौर पर आपकी ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। जब कोई चीज़ आती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियाँ होती है, लेकिन वक्त के साथ वो समाज में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपका इंटरनेट चला गया, इंटरनेट नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट पर ही एआई के माध्यम से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप भैया। शायद अनन्या का कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपके पास अनुभव है, तो आप जाके कहीं थोड़ा एआई के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से निर्भर होना ये भी बहुत गलत बात है। इसके बारे में आप जरूर जानिएगा, जरूर सोचिएगा। चूंकि सर जिक्र हो रहा था कि यहाँ एआई चैट जीपीटी का, युवा आप भी हैं, युवा मैं भी हूँ, युवा अनन्या भी हैं, तो मैं एक युवा के लिए, एक पत्रकार स्टूडेंट्स के लिए, एक फाइनली क्या मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, क्या आप कहना चाहते हैं, एक छोटा सा संदेश?
2: सर एआई यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, इट्स गुड थिंग, बट सबसे पहले आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए।
1: क्या बात है, नाइस
2: ना। आप सेल्फ स्टडी आप कभी नहीं छोड़ सकते ना। दूसरी चीज़ की जैसे कि आज की डेट में आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो सीधे सीधे एंकर बनना चाहते हैं, बट एंकर बनने के पहले आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: आप केवल टीपी पे जो लिख दिया गया वो आप केवल पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो कभी ऐसा होगा तो ब्लैकआउट हो जाएगा दो मिनट के अंदर। आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या चल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी ठीक है, आप प्रॉम्प्ट डाल के चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन उस विषय को आपको डिगिंग करना आना चाहिए
1: जी।
2: आप टोटली डिपेंड हो गए वो, लेकिन इसके साथ ही आने वाला टाइम लेटेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। एक चीज़ को समझिए जो है कि टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर आप बात करें किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी आने में 10 साल 15 साल 10 साल 12 साल लगते थे। आज आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन आने में 6 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आपने भी बीच में भी कहा था कि इसमें जॉब्स बहुत जा रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो सर जॉब जाती तो हैं, लेकिन जॉब उनकी जाती हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपग्रेड नहीं करता। आज का युवा, आज का बच्चा इस बात को ध्यान रखे कि आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करते चलना है। आप पहले जो लोग कमाते थे उससे आप 20 गुना कमाना स्टार्ट कर दोगे, इस फैक्ट कमाओगे, लेकिन आपको उसी तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और ट्रेडिशनल में भी, दोनों को अगर आपने मैनेज किया तब तो ठीक है, लेकिन आप किसी एक पर डिपेंडेंसी आपने की तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो लिसनर्स, इस बात को अगर हम वो एक सार निकालें, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहा यह भी जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि संदीप तिवारी जी की बात को ही मैं आगे लेकर जा रहा हूं कि आप वक्त के साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़िए, कोर्स करिए, सीखिए, समझिए, और अपने आप को समय के साथ आगे लेकर जरूर जाइए। देखिएगा एक न एक दिन वक्त आपका जरूर आएगा, और आप कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। बातों का सिलसिला यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहे भारत न्यूज 360 टीवी के आप एडिटर इन चीफ संदीप तिवारी जी, साथ ही साथ जुड़ी रहीं हरफन मौला एक एंकर और ब्यूरो चीफ ऑपरेशन हेड अनन्या ठाकुर जी इसी चैनल से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सो लिसनर्स, ये वार्ता आपको कैसी लगी? 0120 यानी कि 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे, रेडियो FM के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारिए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें? इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले हैं, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुँचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनका असर नागरिकों पर पड़ता है, उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में

पहुंचते हैं, अर्धशहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है इससे आप अपने आप को बचा कर रखें, ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और एसएमएस, इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं, लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एनक्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवाकर बैंक खातों के ओटीपी प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में। इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं। अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसें, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित तो पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है। टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें? सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी। बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, सुरुशादा 90.8 FM पर मैं हूँ गगन। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, और इस बात को अच्छी तरीके से समझाया भी जाता है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। तो इसी प्रकार के कई सारे सुख बताए गए। जीवन में साफ सफाई का बहुत खास रोल है। अगर हमारे आसपास साफ सफाई है तो ये सच है कि हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये भी सच है कि स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से हिंदुस्तान में चल रहा है। कहते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। साफ सफाई कितनी जरूरी है, इसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए जाहिर सी बात है कि एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और इस चर्चा में हमेशा हमें सहयोग करते हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आदेश के गढ़पले साहब शारदा अस्पताल से। तो ये सारी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदेश के गढ़पले जी शारदा अस्पताल से। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर इस सहयोग के लिए, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
6: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
5: सर, जिंदगी में साफ सफाई एक खास स्थान रखता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर साफ सफाई नहीं होती तो कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं और बहुत बड़ी समस्या एक किसी व्यक्ति को रोग के रूप में वो समस्या सामने आती है। तो कहने का आशय ये है कि हम धीरे धीरे सवालों का जो सिलसिला है, कई सारी बातें हैं, मैं बेसिक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साफ सफाई को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे।
6: साफ सफाई भाई महत्वपूर्ण अपने जीवन का अंग ही माना जाना चाहिए। आप सब लोगों को पता है महात्मा गांधी जी ने सफाई के अभियान के बारे में बहुत सारा जोर दिया था। स्वतंत्र संग्राम आंदोलन चल रहा था, उसी पीरियड में उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया था और उन्होंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेके सफाई कराई थी। इससे ये पता चल जाता कि सफाई अपने एक जीवन का अनिवार्य अंग है। आप देखते हो कि भाई सफाई यदि घर में बराबर नहीं है तो आपको उस घर में रहने का मन ही नहीं होता। जैसे अपने कपड़े साफ होने चाहिए, अपना घर साफ होना चाहिए, घर के अगल बगल की सफाई होनी चाहिए, तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी होती है।

0: अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि किसी भी बीमारी से बचने का जो तरीका है, जो एक उपाय है, वो है साफ सफाई। और अगर साफ सफाई रखकर हम कई बीमारियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। अगर जहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो इस समय डेंगू है, मलेरिया है, तो और किस तरीके से हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, या यूं कहें कि साफ सफाई रखकर इन बीमारियों से कैसे हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।
1: आपने सही बात किया, आपके अगल बगल में पेड़ पौधे उग जाते हैं, घास उग जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, तो ऐसी चीजों में जैसे कि मच्छर पानी में पैदा हो जाते हैं और पानी एक जगह जमा होने की वजह से वो नीचे वाले जो हम शरीर अपने जीवन को पानी चाहिए उसको दूषित कर देता है, तो मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये जल्दी ही अभी मौसम में आ गई है और काफी अभी हमने देख रहे हैं कि भाई हमारे अस्पताल में काफी मरीज इससे पीड़ित आ रहे हैं। दूसरी बात, गंदा पानी यदि हुआ है तो इससे जॉन्डिस फैल जाता है, टाइफाइड फैल जाता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, तो ये भी मरीज हमें काफी दिखाई दे रहे हैं। यदि हम अपने तरफ से साफ सुथरा रखेंगे, गंद को हटा देंगे, तो मच्छर ही पैदा नहीं होंगे। यदि मच्छर पैदा नहीं हुए तो नेचुरली मच्छर से होने वाली बीमारी ही नहीं होगी हमको, तो ये हम लोग एक प्रिवेंशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें हर एक आदमी का योगदान जरूरी होता है।
0: जी सोलिसिटर्स, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम साथ मिलकर चलेंगे, सब ये ठान लें कि हमें गंदगी को दूर रखना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, मुझे लगता है कि स्वच्छता अभियान की वजह से लोगों के दिल दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि साफ सफाई नहीं होगी तो डेंगू से आप परेशान हो सकते हैं, जहां जल भराव है वहां पर मच्छर आएंगे, मच्छरों की वजह से मलेरिया के आप शिकार हो सकते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करें कि हमें बीमारियां अपने आसपास नहीं फटकने देनी है, जल भराव इकट्ठा नहीं होने देना है, ताकि आप डेंगू और मलेरिया या डायरिया कई प्रकार की बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बात आती है कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, हाथों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, और क्योंकि अगर इंसान हाथ की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता है तो जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा खा लेता है क्योंकि उसने हाथ की सफाई की नहीं है। अगर हाथ की सफाई करता है तो कई प्रकार की बीमारियों से वो अपने आप को बचा कर रख सकता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही बोला है आपने कि भाई आजू बाजू की सफाई के अलावा भी हमें अपने आप की भी तो सफाई करनी चाहिए। अपने आप की सफाई नहीं करोगे तो हम कहीं बीमारियों से, चर्म रोगों से अपने आप को पीड़ित कर सकते हैं। तो हमें ये प्रिवेंशन भी तो लेना चाहिए कि हम अपने आप को साफ सफाई रखें, हाथों को सफाई रखें और मास्क रखें। और जैसा अभी तो ये डेंगू के सीजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू का मच्छर है ये अच्छे पानी में पैदा होता, गंद पानी में नहीं होता। जैसा कि अपने घर में गमले हैं, गमले में आप पानी डालते हो, गमले में 7 दिन तक यदि पानी नहीं बदला तो वहाँ डेंगू मच्छर पैदा हो जाएगा। और जैसे टायर है, छत पे टायर रख देते हैं तो टायर को अपन देखते नहीं है तो पानी तो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, गंद वाला नहीं है, उसमें भी डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। रोड में है, रोड में छोटे छोटे गड्ढे हो गए और ज्यादा रगबाट नहीं है तो वो स्वच्छ पानी है, उसमें भी डेंगू मच्छर पैदा होता है। तो ऐसे समय में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हर 5 दिन में गमले का पानी बदल देना चाहिए। रोड में यदि छोटे छोटे गड्ढे है तो उसमें मट्टी डाल दो या कुछ पत्थर डाल दो या कुछ ईंटे बोल्डर डाल दो, और टायर वगैरह है तो टायर को निकालो, उसका पानी साफ कर लो, घर की गंदगी कबाड़ी को दे दो। तो ये सब चीज करने से डेंगू का प्रभाव और जो बचाव बहुत आराम से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसी में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्वच्छ भारत अभियान निकाला, अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई अभियान के बारे में और ये डेंगू के बारे में जो मैंने बताया अभी कि भाई गमले का पानी बदल दो, उसमें केरोसिन डाल दो, कूलर का पानी बदल दो उसमें केरोसिन डाल दो, ताकि बच्चे हमारे डेंगू मच्छर पैदा ही ना हो।
0: जी,
1: मच्छर पैदा ही नहीं हुआ तो काटेगा कैसे
0: बीमारी?
1: हाँ, मलेरिया का जो है वो रात को काटता है, वो गंद पानी में तैयार होता है। इसलिए बाहर की भी सफाई और अंदर की भी सफाई बहुत जरूरी है ताकि मच्छर पैदा ही ना हो, पैदा होंगे तो काटेंगे। और उसके लिए फिर हमें गवर्नमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले इतना तो कर नहीं पाओगे, आप अपना घर आजू बाजू थोड़ा देखोगे। कम्युनिटी को यदि देखना है तो कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सरकार की भी सहायता लेना पड़ेगा। तो इन मच्छरों को पैदा न होने के लिए, और यदि पैदा हो गए तो उनको लार्वे को मारने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट करेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखे चलना पड़ेगा।
0: क्या बात है लिसनर्स, इस बात से एक बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि जहाँ जल भराव होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ पर मच्छर पैदा होता है और जिसकी वजह से मलेरिया की बीमारी फैलती है। और जहाँ अगर साफ पानी इकट्ठा है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बातें बताई कि गमले का पानी है, किसी टायर में पानी भरा हुआ है, तो जो कि 2-3 दिन रोज का भी है, जो कि गंदा नहीं है लेकिन साफ है, उसको भी आप पानी को चेंज कर दें, फैला दें, ताकि डेंगू का मच्छर वहाँ पनप ना पाए और तमाम इस तरीके से अपने आप को बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये जन भागीदारी का एक अहम खास कार्यक्रम है जिसमें कि आपको भी कुछ करना होगा, मुझे भी कुछ करना होगा। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से अस्पतालों में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही होती हैं जो कि धरातल पर भी यूं कहें कि अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है।

0: सवाल ये आता है कि जाहिर सी बात है कि बड़े लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, या यूं कहें कि कभी कभी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भी वो नादानी कर जाते हैं, भूल जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। सवाल ये होता है कि बच्चे किस तरीके से अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें, या अभिभावक अपने बच्चों का किस तरीके से साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि बीमारियों से उनको हम बचा कर रख सकें।
1: देखो, बच्चा तो हमारा फ्यूचर है और फ्यूचर को बनाने वाले हम ही लोग हैं, तो उनको बताना चाहिए हम लोगों ने कि भाई देखो, अपने आप की सफाई, अपने बाजू की सफाई, दोनों हमारे लिए जरूरी है, और तीसरी होती मन की सफाई। बट मन की सफाई के लिए उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बाद में। अभी हम लोग फोकस करते हैं कि बाहर की सफाई, घर के बाहर की, रोड की सफाई, नाले की सफाई, कचरे की सफाई, कचरे को बराबर जगह पे डालना है, कूड़े को अपना बराबर जगह पे डालना, उसकी जगह पे डालना है, रास्ते पे ना फेंकना है, ना गाय को अननेसेसरी देना है। जो हमारी प्रथा है कि गाय के पीछे पीछे जाके लड़ते हैं, उसको कुछ भी देती है, कुछ भी बेचारी खा लेती है, ये प्रॉपर जगह पे उसको दे दो। उनका भोजन देना है तो अपने प्रॉपर जगह पे, फिर उसका इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए। दूसरी बात है कि हाथ की सफाई करना बहुत जरूरी है, हाथ धोना बहुत जरूरी है, खाने के पहले और खाने के बाद दोनों समय हाथ धोना चाहिए। क्योंकि खाने के पहले इसलिए लोग क्या करते हैं, आजकल सैनिटाइजर लगा लेते, उससे खा लेते, बट लेकिन मेरे हिसाब ये हो कि भी साबुन से आप धोए तो बेटर होगा, बेहतर होगा, वहाँ की सैनिटाइजर से आप हाथ धोए। दूसरी बात है कि भाई अपने, अभी भी मैं बोलूंगा कि मास्क लगाया करो, ओडोमास भी लगाया करो और अपने नाक पे मास्क भी लगाया करो, और नाक में पूरा नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए। ये नहीं कि लोग आजकल मुंह पे लगा लेते और नाक पूरा खाली रहता है, शो के लिए लगाते, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा पूरा जो है आपके हाथ में चॉकलेट का जो पॉकेट बचा है छोटा सा, तो उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डालें, सेग्रीगेशन करें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, ताकि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो है वो अपने हिसाब से प्रॉपरली डिस्पोज हो। तीसरी बात, हाथ की सफाई करनी चाहिए, अपने आप को बराबर रखना चाहिए, जूते बाहर रखना चाहिए, आपने किचन में जूते नहीं ले जाना चाहिए, चप्पल नहीं ले जाना चाहिए अननेसेसरी, उससे क्या होता है कि अननेसेसरी डस्ट चला जाता है और अपना भोजन अनहाइजीन टाइप हो जाता है। किचन की बिल्कुल प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, बाथरूम की प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, ये बच्चों को अभी से हमको बताना चाहिए।

0: सर आपने यहाँ एक सवाल पैदा कर दिया है कि साफ सफाई की जो बातें बताई वाकई बहुत अच्छी तरीके से बेसिक बातें बताई हैं। ये तो रही घर की बात, चूंकि अस्पताल एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ दूसरा तीसरा व्यक्ति मरीज है या अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस टॉयलेट को यूज कर रहा है जो कि कॉमन है, जहाँ हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो अस्पताल में किन किन चीजों का ख्याल रखे व्यक्ति ताकि वो जो एक बीमार व्यक्ति है वो साफ सफाई रखे तो अपने आप को बचा सके, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो अपने आप को कैसे बचा कर रख सके।
1: जो भी आदमी हॉस्पिटल में आता है वो बिल्कुल अपने खुशी से नहीं आता, उसकी मजबूरी होती है, उसको जरूरी होता है, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इस समय में हॉस्पिटल एक टेम्पररी घर है जिसको होम बोलते हैं, टेम्पररी होम मरीज के लिए। तो टेम्पररी होम में रखने की वजह से जैसा वो अपने घर में बाकी चीजों की ख्यालत रखता है, बाकी चीजों का ख्याल रखता है, उसी हिसाब से उन्होंने हॉस्पिटल का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि भाई सपोज उसने फ्रूट खा लिया तो फ्रूट का जो टर्फल है, जो छिलटा है, वो बराबर अपनी जगह पे उसने डिस्पोज कर देना चाहिए, प्रॉपर थैली में डिस्पोज कर देना चाहिए, कूड़ादान में डिस्पोज करना चाहिए, और इसी से उसको हमें सहयोग मिलेगा। वॉशरूम में जाएगा तो वॉशरूम में ही उसने यूरिनेशन करना है या लैट्रिन करना है तो उसके ही इसमें करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। तो ये उसने यदि ध्यान दिया, हम लोग आजकल क्या करते हैं कि प्रॉपरली नल का भी सेंसर भी लगा दिया हम लोगों ने कि पानी वेस्ट ना हो, तो उतना ही पानी मिलेगा। दूसरी बात, हमने सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर भी रखा है, साबुन भी रखा है। तो जैसा मैंने बोला, खाने के पहले और खाने के बाद लाइक दिस, उसका जब भी पेशाब आएगा या लैट्रिन जाएगा तो लैट्रिन के बाद में उसको हैंड वॉश करना जरूरी है। इसका जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है हॉस्पिटल का, उसको हम बोलेंगे कि तू प्रॉपरली जगह पे रखा कर, ताकि हमारा जो वार्ड बॉय आएगा या हाउसकीपिंग आएगा उसको एक सहायता मिलेगी उसकी वजह से। तो इसमें हॉस्पिटल की सफाई रखने में हमें काफी मदद मिलेगी।
0: लिसनर्स, वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी, एक जन संदेश दे दिया कि इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, चाहे वो घर की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो या पब्लिक प्लेस की बात क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि एक स्वच्छ वातावरण आप दे पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपना

0: डॉक्टर साहब एक बात ये आती है, अमूमन होता क्या है कि जो एक पालतू जानवर है, जैसे कि हमने अभी बात की गाय की बात की, हम बात करते हैं कुत्तों की बात कर लेते हैं, इतना लगाव हो जाता है कि आप खाना खा रहे हैं और कुत्ता आपके पास बैठा हुआ है, उसको आप सहरा रहे हैं, या हो सकता है कि वो पालतू जानवर बीमार है और जो कि आपके संपर्क में आ गया तो आपको भी बीमारी लग गई। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि पालतू जानवर अगर है तो उसकी साफ सफाई कैसे करें और उसके संपर्क में आ रहे हैं तो उस बीमारी से हम कैसे अपने आप को बचा करें?
1: बिल्कुल आपने सही बात बोला, लोग अंधे हो जा रहे हैं। अब मेरा कहना ये है कि भाई आप जानवरों से प्यार ना करो, ऐसा मेरा बोलना नहीं है। आप जानवरों को बिल्कुल प्यार करो, वो भी इसके सहभागी है। हमने प्राणी मात्रा पर दया रखना चाहिए, प्राणी मात्रा के ऊपर प्रेम करना चाहिए
0: जी।
1: बट यदि आप खाना खा रहे हैं और उसी समय कुत्ता आता है, आप उसको एक हाथ से सहला रहे हो दूसरे हाथ से खाना खा रहे हो, ये बात को मैं कतई योग्य नहीं मानता हूँ। उसको उस समय प्रॉपरली जब आप खाना खाओगे तो आप कुत्ते को प्रॉपरली गाइडेंस दे दीजिए। यदि खुला है तो, बांधा हुआ तो बात अच्छा है, वो आएगा नहीं। यदि खुला कुत्ता है तो उसको बोलना चाहिए कि जब तक खाना नहीं होता तू बैठ जा वहाँ, खाना होने के बाद जब यदि आएगा तो उसके आप सहला हो, सहलाने के बाद में प्रॉपरली हाथ धो, क्योंकि कुत्ते से भी हमें बीमारी मिलती है। एचनाना इकाइनोकॉकस ग्रैंडुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है, लिवर में हाइडेटिस सिस्ट होता, ब्रेन में एक न्यूरोसिस्टेसिस कोशिश होते है, ये बीमारी कुत्तों से होती है हमें। यदि प्रॉपरली आप ध्यान रखोगे, उसको वैक्सीनेशन रखोगे, वैक्सीनेशन इसलिए कि उस कुत्तों से कुत्ता यदि काट दिया और वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमें रैबीज भी हो सकता है, चाहे वो पालतू क्यों ना हो, हमें कुछ पता नहीं होता है, तो कैरियर भी हो सकता है रैबीज का। तो ऐसे समय में हम अपनी तरफ के प्यार करना एक बात अलग है,
0: अपनी जिम्मेदारी,
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना भी एक अलग बात
0: है। सो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप पशु प्रेमी है, जाहिर सी बात है कि वो बेजुबान होते हैं लेकिन प्यार की भाषा को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप उनसे जरूर प्रेम रखें, लेकिन आपको अपनी काया से भी बहुत प्यार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर कोई बीमारी उसको लगी हुई है और आपको ट्रांसफर हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं तक ये बातें पहुंचाई। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इस जानकारी को सुनेंगे, समझेंगे और अमल में जरूर लेकर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आपने बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी ही बातें, लेकिन चूंकि कार्यक्रम को यहां मैं वाइंड अप कर रहा हूं, तो एक कोई जन संदेश जो आप कहना चाहते हो हमारे श्रोताओं से?
1: मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा, अपनी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने घर का कूड़ा दसवीं माले पे यदि आदमी है तो धड़ से नीचे फेंक देता है।
0: जी जी जी,
1: ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली कूड़े को अपनी जगह पे रखो, कूड़ादान में रखो, और ये कूड़ादान में रखने के बाद उसको उठाने वाला जो आएगा उसको तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से उसको उठा लेगा। बाजू के घर के बगल में डाल दे तो उस बाजू वाले को भी परेशानी है, दो चार बातें वो आपको सुनाएगा। तो ऐसे अवॉइड करने के लिए एक अपने आप को डिसिप्लिन करो, साफ सुथरी जगह पे रहते हो तो साफ सुथरी जगह रखो, और इसी को बीमारी में प्रिवेंशन करने के लिए सरकार को मदद करो।
0: क्या सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है कि अगर बात का निचोड़ निकाला जाए, साफ सफाई जीवन का अहम खास हिस्सा है, इसको अपनाकर चलिए, बीमारियों से अपने आप को बचाकर चलिए, और स्वच्छता अभियान जो चल रहा है इसमें कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम देश में अपना योगदान दे रहे होंगे। ये चर्चा आपको कैसे लगी? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रादन 90.8 FM। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
5: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
4: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, भारत की अधिकतर जनता गांव में रहती है और इसमें से भी आधे गांव बिना बिजली के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब हम ऊर्जा के अधिकाधिक उत्पादन के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में उसके नवीनीकरण और बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वोत्तम उपाय है, जिससे हम ऊर्जा की मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी अब सौर ऊर्जा का उपयोग संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ाए और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। और किसान मित्रों, आजकल सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी किसान भाइयों की काफी मदद कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगवाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत मात्र हमारे किसान भाइयों को कुल लागत का 10% ही देना होता है और ये पैसा देकर के वो अपने यहाँ पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे ताज़ा फल सब्जियां मिलें, साथ ही वो रोग रहित हों, स्वस्थ हों और उनमें कम से कम कीटनाशकों का उपयोग किया गया हो। इसीलिए आज के समय में लोग अपने घरों में गृह वाटिका बनाते हैं ताकि उनको ताज़े फल सब्जियां मिलती रहें और जो बाज़ार जाने में आने में उनका जो समय लगता है वो बचा रहे। साथ ही साथ आज की जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, उससे कुछ राहत मिले और वो कुछ कृषि कार्य करें ताकि उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हो और जो तनाव है आज की जिंदगी में वो कम हो। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पोषण सुरक्षा में गृह वाटिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे रसोई उद्यान या किचन गार्डन भी कहते हैं। ये घर के आसपास या छत पर उगाई जाने वाली एक बागवानी है, जहां परिवार के उपयोग के लिए रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त मौसमी फल, फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। गृह वाटिका पोषण सुरक्षा, आर्थिक बचत और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये मनोरंजन और बच्चों को प्रशिक्षण का भी अच्छा साधन है। किसान मित्रों, गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है, जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए विभिन्न मौसमों में मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। किसान मित्रों, गृह वाटिका से परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तरोताजा हवा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन से युक्त फल, फूल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा बगिया में कार्य करने से शारीरिक व्यायाम भी होता है। इससे परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। किसान मित्रों, प्रत्येक छोटे परिवार में औसतन 100 रुपए की सब्जी प्रतिदिन बाजार से खरीदी जाती है। इस प्रकार प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत कर सकते हैं गृह वाटिका बना करके। इसके अलावा यदि फलदार पौधे जैसे नींबू, पपीता, आम, अमरूद ये भी बगिया में लगे हों, तो फलों के लिए खर्च होने वाले बजट की भी बचत की जा सकती है। स्वयं की मेहनत और पसीने से उपजी हरी भरी तरोताजा सब्जियों को देखकर सभी का तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसके अलावा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में जाने का बहुमूल्य समय भी बच जाता है। वैसे किसान मित्रों, स्वयं की देखरेख और मेहनत से पैदा की गई सब्जियों का स्वाद और आनंद कुछ और ही होता है। तो जो भी हमारे भाई गृह वाटिका बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत सी जगह बची होती है उनके घर आंगन में, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शर्त यही है कि वहां पर धूप का आना जाना हो, ऐसी जगह आप गृह वाटिका स्थापित करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।
1: और

एक बात और मेरे दिमाग में आई कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चल चढ़ा कोई बंद चला जंजीर, क्योंकि सिकंदर जैसे जब गए तो दुनिया से खाली हाथ गए थे, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाए। तो भाई हमारी और आपकी तो फिर बात ही क्या है। तो तीसरी बात में दादा ने एक चीज और बताई, भाई माया झूठी है, इसके पीछे बावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग मानते कहाँ हैं। सुनेगा तीसरी बात में।

किसान मित्रों, अभी आप प्रियंका चौधरी से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने किसानों को हर माह पेंशन देने के लिए किसान मानधन योजना चला रखी है। इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर माह 3000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान भाई इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है। योजना में उम्र के हिसाब से किश्त की राशि तय होती है। इसके लिए 18 से 29 साल की उम्र के किसानों को 55 से 109 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी। 30 से 39 साल की उम्र के किसानों को 110 रुपए से 199 रुपए के बीच की किश्त देनी होगी और 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर माह 200 रुपए जमा करवाने होंगे। अगर आवेदनकर्ता पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। तो हमारे वो किसान बहन भाई जो किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं रविंदर खालौर और उनके साथियों से एक रागनी।

रविंद्र खालोर और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

तो दोस्तों अब तो नारद जी हताश हो जाते हैं और उधर सावित्री के पिताजी अश्वपति, उन्होंने सोचा इकलौती पुत्री है, हो सकता है इसके दिलो दिमाग में आ जाए और फिर कहने लगे, बेटी मेरी एक बात सुन,

चंदा केसर के सोजन से ये सत्यवान सावित्री का किस्सा चल रहा है, और देखिए इसका शेष भाग दूसरी केसर में सुनेंगे।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। SMFE यानी स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम एक खास सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के विषय में, यानी भाषा और संचार कौशल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यही एक वजह है कि स्टूडियो से निकलकर आज हमारा सुनो शारदा 90.8 FM पहुंच रहा है मुनामी फाउंडेशन, जो कि नोएडा में स्थित है। और इसी संबंध में हम वहाँ जो उपस्थित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से शारदा यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ मुनामी फाउंडेशन ने उन लोगों को ट्रेंड किया ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी दिशा अगर इंसान को मिल जाए तो वो यकीनन अच्छा कर सकता है। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम।
5: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
6: मुनामी एक फाउंडेशन है और SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना और साथ ही साथ डॉक्टर रूपाली। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग यानी कि शारदा विश्वविद्यालय इनके साथ मिलकर क्या काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें हो चुकी है मेरी और मैं अब सीधी बात करना चाहता हूँ डॉक्टर रूपाली सक्सेना से। तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि हमारा किस तरीके से यहाँ जुड़ना हुआ है और SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ किस तरीके से इस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
7: जी सर, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो हम शिक्षा और या दीक्षांत की बात करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स तक ही हम सीमित नहीं हैं। तो ये जो कार्यक्रम, जो ये इनिशिएटिव हमने लिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, वो सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को वापस कुछ दे सकें। तो ये एक पहला कदम है हमारा, इनिशिएटिव है SBS का, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का। और अगर मैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं और जो 3 महीने की ट्रेनिंग हमने करी, वो ट्रेनिंग हमने करी है क्रोशे का काम, जो धागे से काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल हम लोग पर्यावरण को लेके और प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, तो ये जो काम है ये धागे का काम है। और जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है, ये जो है ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं रीयूज एंड रीसाइकिल की बात। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक ग्रुप है और जैसे आपने बताया मुनामी फाउंडेशन, ये इन महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। और अगर SBS की बात करें तो जो हमारा रोल था वो इन महिलाओं को लेकर, वो इनको सबसे पहले ये कैसे अपना लाइवलीहुड, अपना जो जीवन व्यतीत करने के हाँ जीवन शैली है उसको कैसे आप सुधार कर सकते हैं। और दूसरा था कि जहाँ हाथों से ये ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही थी, ये जो ट्रेनिंग थी ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रूप में, जैसे हम बात करें कि लीडरशिप में, कम्युनिकेशन में, या आप बात करें कि किस तरह से आपको बिजनेस एटिकेट, क्योंकि जहाँ इन महिलाओं को हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि इनको काम आ गया, इनको वो काम आगे बढ़ाना है। तो एक हम एंटरप्रेन्योर रूप में देख रहे हैं इन महिलाओं को, कल के एंटरप्रेन्योर के रूप में, ये कैसे जो है ये काम को अपना स्क्रैच से लेके, जहाँ माल बनाना है हाथों से और मार्केट में जाके इस माल को जो है बेचना है और अपनी लाइवलीहुड जो है कमानी है। तो ये जो पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग रही हमारे साथ जो है वो करीबन 30 लोगों का ग्रुप था और सारी महिलाएं थी, और इनकी बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है। और एक जो खास बात है, ये सभी लोग माइग्रेंट हैं, मतलब ये यहाँ दिल्ली के वासी नहीं है, ये बेसिकली ईस्टर्न बिहार से सब लोग आए हुए हैं। तो इनके साथ जो इनकी बात करने का तरीका है, जो शैली है, वो बहुत अलग है जो हमारे दिल्ली के लोगों में होती है। और इनको जो कस्टमर है, जो इनका एंड क्लाइंटेल है, वो सारा यहाँ दिल्ली NCR का ही है। तो जो हमारी ट्रेनिंग रही वो कुछ तरह से इस इन बातों को लेके रही कि आप देख रहे हैं ये आपका कोरोना का टाइम भी था, तो ये किस तरह से अपने आप को डिजिटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। तो जो ये सारे 3 महीने की ट्रेनिंग है हमने ऑनलाइन मोड में ली, जूम या Gmeet के ज़रिए में रही है ट्रेनिंग। और जो बातें हमने करी, जैसे मैंने कहा कि नेतृत्व की बात करी, ट्रेन द ट्रेनर मोड की बात करी, कि आगे जाके जो 30 महिलाएँ हैं वो आगे जाके बाकी जो इनके ग्रुप है, ये जो मोनामी फाउंडेशन है, इनके साथ करीब 160 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो आगे जाके ये कैसे इन लोगों को इन सब बातों को लेकर ट्रेन कर सकती हैं। तो ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो था हमारा, और मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इसमें इस तरह की केस स्टडीज़ हमें मिली जहाँ पे जो महिलाएं पहले बोलने से कतराती थी वो अब खुद ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं।
6: आपने बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में बता दी, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल मैं आपसे पूछ पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बात को समझने की कोशिश करूँ तो बात निकल कर ही सामने आती है कि यहाँ पर करियर की बातें हैं और कुछ जो गाइडेंस आप लोगों ने यहाँ दी हैं, वो जो सीख इन लोगों को आपके ज़रिए मिली है, इस फाउंडेशन के ज़रिए मिली है, तो वो ज़िंदगी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम आएगी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, तो ये सारी बातें आपने इस बात के ज़रिए हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दी। फाइनली अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि समअप करने से पहले, क्योंकि SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का एक भाग है, साथ ही साथ आपके साथ जुड़ा रहा शारदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, सुनो शारदा 90.8 FM भी, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक कवरेज भी इन लोगों को मिल रहा है, इनकी बात हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ये एक जनसंचार का माध्यम है ताकि लोग अवेयर हों, लोग जान पाएँ, पहचान पाएँ अपना जो स्किल है और वो लोग इनसे कैसे जुड़ सकें।
7: बिल्कुल, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने स्कूल ऑफ मीडिया एंड फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का। यहाँ पे मैं एक बात जो कहना चाहूँगी वो एक, हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी, जहाँ पे SMFME से लोग आए थे और उन्होंने पूरा इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो को लेकर हमने मोनामी फाउंडेशन के साथ शेयर करी, और ताकि जो बात आपने कही कि जो इनका पब्लिसिटी है, जो इनका आगे हम जो बढ़ावा दे सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इस तरह का क्रोशे का काम भी होता है। अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो स्ट्रेस बॉल, तो हमारी जनरल नोशन है पब्लिक की वो प्लास्टिक की होगी या रबड़ की होगी, लेकिन ये जो है ये बनाते हैं, ये धागे से बनाते हैं। तो लेकिन काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, और जो वीडियो हमने बनाई और जो भी हमने पब्लिसिटी या जो क्रिएटिव्स बनाए उसके माध्यम से हम अपनी बात जो है, इन लोगों की बात जो है वो हम अपने सामान्य लोगों की, अपनी जनरल पब्लिक तक पहुँचा सके। तो काफ़ी जो ये कोलैबोरेटिव वर्क रहा, ना कि सिर्फ SMFME बल्कि हमारे साथ जो जुड़े वो स्कूल ऑफ डिज़ाइन भी था, जहाँ उन्होंने इनको डिज़ाइन के बारे में जानकारी दी, और अब एक हम नया एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जहाँ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी आजकल प्रचलित है, तो जो रंग है वो भी अब हम लोग, जैसे हमने कहा कि ये एक सस्टेनेबल और सेल्फ सस्टेनेबल मोड में इन औरतों को लाने की बात है। तो किसी भी चीज़ के लिए इनको बाहरी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, तो हम इनको नेचुरल प्रोडक्ट से डाई कैसे बनाते हैं, तो वो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के, शारदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के उसकी ट्रेनिंग भी हम इन लोगों को अब दे रहे हैं।
6: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए। सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़ी रही डॉक्टर पारूल सक्सेना, जो कि मुनामी फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है महिला सशक्तिकरण का। यहाँ मुझे एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM से, मैं हूं गगन और आज स्टूडियो से निकलकर मैं बाहर आया हूं। यहां एक जगह है जो कि नोएडा में मोनामी फाउंडेशन और मोनामी फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यहाँ के मुझे ये लग रहा है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। एक छत के नीचे दूर दराज से महिलाएं हैं जो कि इकट्ठी होती हैं और काम को यहाँ सीख रही हैं, कुछ अच्छा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए और समाज में कहीं ना कहीं एक योगदान दे रही हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा सटीक उदाहरण यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मेरे साथ ग्रुप मेंबर हैं, तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मेरा नाम है अंचल मिश्रा, मैं सेक्टर 122 में रहती हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं मोनावी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे मुझे अनुराग मैम ने ये क्रूश का काम बहुत अच्छे से सिखाया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जिसमें बोतल कवर है और बॉल बनाना है, ऑल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी से वहाँ भी कर मैम रूपाली मैम और पालू मैम वो भी हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी जिसमें 12 क्लासेस करवाई है। उस क्लासेस में उसने बहुत सारी बातें सिखाई हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है कि कैसे काम करना है, कैसे काम को बढ़ाना है, सब मिलके कैसे काम करना है और मार्केटिंग काम में कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उन सामानों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके।
0: क्या बात है, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है और जो आपने सीखा है समझा है वो सारी बातें आपने एक फ्लो में एक ही बार में हमें बता दी, तो मुझे आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और बातें मैं ज़रूर आपसे करूँगा। मेरे साथ एक और मेंबर हैं, तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम है रिंकू झा।
0: रिंकू मैम आप कहाँ से हैं?
2: बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ एक सेक्टर 122 में रहती हूँ और ये अनुराग मैम ने हम लोगों को ये क्रूस का काम सिखाया है और तरह तरह के प्रोडक्ट बनाना क्रूस से सिखाया है। बहुत सारा चीज़ जैसे टैटल, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। और सर ये है कि 3 से हम लोगों का ट्रेनिंग भी हो रहा है, मार्केटिंग के बारे में भी हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाना और उनको कैसे बेच सकते हैं वो भी उन्होंने सिखाया है। और हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, 12-20 आदमी करीब, सब लेडीज़ हैं और हम लोगों को काम करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। और सर और क्या
0: जी जी चलिए कोई बात नहीं, आपने जो बातें बताई बहुत अच्छा, यहाँ से आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम करने में मज़ा आ रहा है। ये कह सकता हूँ कि एक करियर की भी बातें हैं, यहाँ पर लोगों को गाइडेंस भी मिलती है, लोगों को गाइड भी किया जाता है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि करियर की जब बात होती है कि हर किसी का एक अपना सपना होता है, फ्यूचर वो देखता है कि मुझे ये करना है, बेहतर करना है, तो आपको कैसा लगता है, किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ सीख रही हैं, आपकी जो कला कौशल है उसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ सीख रही हैं और क्या सोचती हैं कि मुझे फ्यूचर में यहाँ से बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है।
3: जी सर, मैं अनीता हूँ, सेक्टर 122 में रहती हूँ, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ। और मैंने मेरे क्रूसी का काम तो मुझे पहले भी थोड़ी बहुत आती थी लेकिन अनुराग मैम ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, पारुल मैम भी सिखाया, हमने 3 की ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी कि कैसे हम लोगों को एक साथ मिल के काम करना है, कैसे हम लोगों को मार्केटिंग में कुछ बेचना है, कैसे हम लोगों को आदमी बात करनी है और ये सब सिखाएं। और हम तरह तरह के सामान बना भी लेते हैं हाथ की कला से और वो कला को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हम लोगों की आत्मविश्वास जो है बहुत बढ़ी है, हम लोग किसी के आगे बोल सकते हैं, किसी के आगे जा सकते हैं। और मैं तो छोटी सी जॉब भी करती हूँ स्कूल में, तो वो भी कर रही हूँ और घर में आने के बाद मैं ये भी काम करती हूँ, टाइम जब जब मिलता है तब तक मैं ये काम करती हूँ और ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे मैं सोचती हूँ कि जितने भी करे सब करे और सब आगे बढ़े। अब मैं लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि हम लोगों को ऐसे ही काम दे और हम लोग ऐसे ही काम करते रहे।
0: कह सकते हैं कि आप फुल टाइम स्कूल में काम कर रही हैं और यहाँ पार्ट टाइम भी आप काम कर रहे हैं।
3: 3 तक मैं स्कूल में ही रहती हूँ
0: और यहाँ आप पार्ट टाइम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रोडक्ट को यहाँ लाकर सेल
3: कर रही हूँ सर। और जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं मुझे मैं बना भी लेती हूँ।
0: अच्छा, वो प्रोडक्ट जो भी आप लाते हैं फिर वो यहाँ सेल हो जाता है, उसका जो आमदनी है वो आपको मिल जाता है। अच्छा चलिए, फाइनली मैं आपसे एक संदेश जानना चाहूँगा, तीनों की बात मैंने आपसे जान ली, सुन ली, समझ ली, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, जिस तरीके से समाज की कुछ बंदिशों को तोड़कर आप लोग आगे आए, काम कर रहे हैं, सीख रही हैं, तो क्या एक संदेश होगा जो कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती, अपना भविष्य उज्ज्वल करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही, तो फाइनली एक मैसेज क्या होगा, आप पहले मुझे बताएं।
1: सर, सर मैसेज यही होता है कि हम लोग भी डरते थे, हमारी भी शादी को 16-17 साल हो गए, तो हम लोग भी डरते, ऐसे कुछ नहीं करते थे घर में, यही ये मेरा रिश्तेदार है वो क्या क्या करेंगे, डर के बैठी रहती थी। लेकिन उसमें घाटा मेरा है, अभी बच्चे को कुछ चाहिए तो वो दूसरे को पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। तो इसीलिए अब जब से इसमें जुड़ी हूँ उसमें हिम्मत आ गई है, जाकि यहाँ भी काम कर सकती हूँ, हो सकता है मैं आगे भी जाऊँ। तो इसीलिए हिम्मत सबको बढ़ाना चाहिए, घर में बैठे कोई फायदा नहीं।
0: क्या बात है, एक संदेश है समाज के लिए कि हिम्मत होगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे।
3: कि सभी आगे बढ़े और सभी घर से निकल के काम करे, एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे कि मैं एक दूसरे पर डिपेंड हूँ, अपना अपना पैरों पर खड़े होने की सबको हक है।
0: क्या बात है, तो मुझे लगता है कि आप तो शुक्रगुजार हो ही रही हैं मुनामी फाउंडेशन की। तो और सही बात है कि जहाँ एक काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोग
2: नारी शक्ति को भी पहचानना चाहिए सर। हाँ। क्योंकि नारी के अंदर बहुत शक्ति होती है, ये लोग हम लोग देर से समझते हैं, क्योंकि समाज हम लोगों को ऐसा मतलब तरीके से समझाया, लेकिन अभी हम लोग जो हैं सो उसे थोड़ा ऊपर उठ के निकल गए हैं घर से।
0: अब तो इस तरीके से माहौल भी बदल गया होगा, सम्मान मिलता है, 2 रुपये आपके हाथ में भी होते हैं।
3: जी सर, एक आदमी करते हैं तो सभी बोलते हैं कि ये बाहर निकली, ये करी वो करी, अभी तो सभी कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ये हिम्मत हो रही कि अब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर।
0: देखिए इससे कॉन्फिडेंस आता है कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि अगर बच्चा रुपया मांगता है तो आप बेफिक्र हो गए उसको स्कूल की फ़ी दे पाएंगे। अदरवाइज़ पहले तो हस्बैंड की सैलरी पर डिपेंड रहना पड़ता था कि तनख्वाह आएगी तब हम देंगे, बच्चे के शौक मौज भी पूरे होंगे और आप भी जो कुछ मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी आपके टाइम टू टाइम हो रही होंगी। तो कह सकते हैं लिसनर्स, यहाँ पर एक नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। एक छत के नीचे अलग अलग कलाकारी के साथ लोग काम कर रहे हैं, मधुबनी का यहाँ इन्होंने जिक्र किया, सीखती हैं समझती हैं उस काम में, वो दक्षता हासिल कर रही हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप मुझे कॉल करके बताइएगा जरूर। आप सबका मेरे साथ बात करने के लिए, मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। थैंक यू।
4: अभी बता।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है, हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम होता है, नैना।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम पर, मैं हूँ गगन और इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और यहाँ एक मोनामी फाउंडेशन है SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रूपाली, जो कि इस फाउंडेशन के साथ और SBS के साथ कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम कर रही हैं, यानी कि एक सेतु का काम कर रही हैं। और इसके अलावा जब मैं धरातल पर देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी मैम अभी कर रही हैं, करवा रही हैं, तो ये सारा होल प्रोसेस क्या है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर रूपाली, आपका सुरुशारदा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। जहाँ से मैं शुरू करूँ, तो हमने शुरू किया था स्वॉट एनालिसिस से। इन महिलाओं का हमने एनालिसिस किया था कि इनमें काबिलियत क्या है, इनमें कमियां क्या है, आगे ये और कैसे बढ़ सकती हैं। इन सब का एनालिसिस करके फिर हमने जो ये ट्रेनिंग इनको दी है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है इन चीज़ों के बेसिस पे। आगे फिर हमने इनको कैसे कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमने ट्रेनिंग दी है कि कैसे बातचीत की जाए लोगों के साथ, अगर ग्राहक आते हैं तो उन्हें किस किस तरीके से अच्छे से सुना जाए, सुनकर उनकी बातों को समझकर फिर उन्हें अपने उत्पादों के बारे में बताया जाए, उसके मुनाफे के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये हाथ से अपने हाथों से डिज़ाइन करके क्रोशिया से उत्पाद बनाती हैं, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत कलरफुल ये उत्पाद बनाती हैं क्रोशिया से। और ये इनके साथ ही साथ जब ये बनाती हैं तो इनको हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग दी है कि इन चीज़ों का, इन उत्पादों का लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लोगों को इनके फ़ायदों का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग इनको ख़रीदेंगे। तो इस सब की हमने ट्रेनिंग दी है कुल मिला के। और यही नहीं, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि पूर्ण तरह हिंदी में कैसे बात की जाए, क्योंकि हमें आजकल हम लोगों को क्या हो गया, अंग्रेज़ी ज़्यादा, हम बोलचाल अंग्रेज़ी में ज़्यादा करते हैं और उस वजह से हम हिंदी कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। तो यह इस ट्रेनिंग के वजह से हमें ये मौका मिला कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकें, तो ये हमने उनसे सीखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि ऐसी ही महिलाओं से हम जुड़ते रहें, उनको सिखाते रहें और उनसे भी सीखते रहें।
1: थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू, धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम यानी SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने बात की भाषा और संचार कौशल के संबंध में। आज हमने जाना कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रेंड किया गया, किस तरीके से इन महिलाओं ने समय समय पर अपनी ट्रेनिंग ली और किस तरीके से वो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और वो समाज का एक हिस्सा बनी हुई हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दे रही हैं। मैं आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज 0120-40-60-205 पर आप मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
5: जी
4: प्लीज कैरी ऑन।
5: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
4: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
5: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
4: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो श्रोताओं, सबसे पहले हमेशा की तरह सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, लिखते हैं,
2: जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचता है।
1: बहुत ही सुंदर विचार और इस विचार के लिए आपका बहुत बहुत आभार उमंग कार्यक्रम की ओर से।
2: जी
1: अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी का।
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा।
1: और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
2: गांव ढाणे कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्यारी बिटिया प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेशों के लिए। और अब आप सबका एक बार फिर से उमंग कार्यक्रम स्वागत करता है श्रृंखला ये भी जानिए में। इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं विमान या हवाई जहाज की।
2: हमने कल जाना था हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में, आज करेंगे हम एक वैज्ञानिक चर्चा।
1: जी
2: आप सबने हवाई जहाज देखा है, बहुत आकर्षक लगते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकांश हवाई जहाजों का रंग अक्सर सफेद क्यों होता है?
1: ऐसा नहीं है कि सभी विमान सफेद रंग के ही होते हैं, लेकिन यदि शोध किया जाए तो पता चलता है कि 60% से भी अधिक विमान सफेद रंग के होते हैं।
2: जी
1: और यदि कोई दूसरा रंग हो भी तो सफेद रंग आपको कहीं ना कहीं उस विमान में जरूर दिखाई पड़ेगा।
2: तो पहला कारण है सफेद रंग विमान को गर्म होने से बचाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि गर्मियों में काले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ऐसे रंग गर्मी या तापमान को अधिक अवशोषित करते हैं।
1: जी
2: आपने जरूर ये भी नोट किया होगा कि जिन जगहों पर ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ वाहनों का रंग भी अधिकतर सफेद ही होता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, विमानों के उड़ने की गति बहुत तेज होती है।
2: जी
1: और इसके कारण घर्षण भी बहुत अधिक होता है और घर्षण के कारण हवाई जहाज का तापमान भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके जेट इंजन बहुत शक्तिशाली होते हैं जो बहुत अधिक तापमान पैदा करते हैं,
2: इसलिए इसे सफेद रंग में रंगना अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि सफेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। पाया गया है कि ये सूर्य की किरणों को 85% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
1: वो क्या?
2: वो ये कि विमान का रंग सफेद होने पर उस पर आई हुई दरारें या डेंट को आसानी से देखा जा सकता है। दूसरे रंगों में डेंट उतने स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते।
1: जी श्रोताओ, एक और खास बात कि सफेद रंग जल्दी फीका भी नहीं पड़ता, जबकि दूसरे रंग वातावरण की प्रतिक्रिया से जल्दी फीके पड़ जाते हैं।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी, हमें आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, हवाई जहाज को अधिकतर सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: हवाई जहाज को अधिकतर सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है?
1: आपको कोई एक कारण बताना है, हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। और हाँ, LinkedIn, Facebook, X और Insta पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इस कार्यक्रम को एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो NCERT की कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक कविता पर आधारित है। इस कार्यक्रम में बताया गया है कि यदि हमारे छोटे छोटे प्रयासों में ईमानदारी और निरंतरता बनी रहे तो इसके परिणाम बहुत सकारात्मक हो सकते हैं।
3: Children.
4: Hello, ma'am.
3: How are you all?
4: We are fine, ma'am.
5: I'm good, ma'am.
3: Very
5: I'm
3: good,
5: fine.
3: Very good that you all are good. Do you like going to the garden?
4: Yes, ma'am. I like it.
3: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
6: I see beautiful flowers.
3: And any other thing that you like in a garden?
7: I like sitting under the tree.
3: And you, Soham?
8: I like to see butterflies.
3: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
9: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
3: Very good that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
4: garden.
3: Wonderful. You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
4: Yes, ma'am.
3: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
4: A jungle.
3: That's correct. And if so many grains of sand are together, as far as you can see,
4: They will make a desert.
3: Very nice. Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
4: Yes, ma'am.
3: This poem will tell us how small things make big things. Okay?
4: Okay, ma'am.
3: So, here comes the poem. Repeat after me. Little drops of water.
4: Little drops of water.
3: Little grains of sand.
4: Little grains of sand.
3: Make the mighty ocean.
4: Make the mighty ocean.
3: And the pleasant land.
4: And the pleasant land.
3: Little words of love.
4: Little words of love.
3: Little acts of kindness.
4: Little acts of kindness.
3: Little deeds of warmth.
4: Little deeds of warmth.
3: Spread smiles.
4: Spread smiles.
3: And happiness.
4: And happiness.
3: So, dear children, how was the poem?
8: It was good.
7: It was fine.
8: Mm-hmm.
5: It was lovely.
3: Yes, it was very nice. And now, would you like to listen to the same poem in a song?
4: Yes, ma'am.
3: So, listen to this beautiful song being sung by a lovely child like you. Okay?
4: Like us.
3: Hmm.

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता।
2: ये कार्यक्रम एक महान शिक्षिका मार्गरेट नोबेल के बारे में विस्तार से जानकारी देता हुआ बताता है कि किस प्रकार वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारत आईं और बंगाल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। वे बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं।
3: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।
4: बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी हैं।
5: अरे, तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
4: अच्छा बाबू।
5: और सुन
4: जी,
5: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
4: हैं?
5: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
4: क्या कह रहे हैं बाबू? मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
5: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
4: अच्छा?
5: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
4: अच्छा?
5: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
4: वो तो ठीक है, पर बाबू।
5: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा, भाग यहाँ से।
4: अच्छा।
5: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
6: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करें, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
5: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
7: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
5: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
7: धन्यवाद।
6: अब बताइए बोस बाबू
5: जी,
6: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
5: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
7: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
5: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
7: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू? जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
5: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
7: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
6: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
7: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
6: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
5: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय?
6: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
5: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
7: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
6: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
8: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
9: गुड मॉर्निंग दीदी।
7: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
10: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
7: फिर तुमने क्या कहा?
10: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
7: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
10: हाँ दीदी।
7: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ। तो
11: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
10: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
7: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
10: अच्छा दीदी।
7: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
10: दीदी ये लीजिए आसन।
7: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा।
10: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा?
7: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
10: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
7: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
10: हाँ वो तो है।
7: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा, आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
12: तबीयत तो ठीक है।
7: अच्छा मीम दीदी, अब मैं चलूंगी। कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
12: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई। लेकिन तभी कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ।
13: अरे कोई उपाली बुलाओ, उपाली।
14: मेरे को बचाओ, मेरे बचाओ, मेरे भाई को बचाओ।
3: हर रोज सैकड़ों हजारों लोग प्लेग से मर रहे हों, तब ऐसे समय में भला लड़कियों को स्कूल कौन भेजता? कुछ छात्राओं की कमी और कुछ धन के अभाव के कारण बोसपाड़ा का वो स्कूल बंद हो गया। इस बीच स्वामी जी और निवेदिता विदेश रवाना हो गए। वहां निवेदिता ने भारतीय कला, संस्कृति और दर्शन पर जगह जगह भाषण किए, लेख लिखे। इससे कुछ धन की व्यवस्था हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि निवेदिता की पुरानी नर्स मिस बेट और एक अमेरिकी महिला मिस क्रिस्टीन ग्रीन स्टाइडल ने भी कलकत्ता आकर सिस्टर निवेदिता के साथ उनके विद्यालय को संभालने का वचन दिया। सन 1902 की सरस्वती पूजा के दिन बड़ी धूमधाम से भगिनी निवेदिता का विद्यालय फिर से खुला।
15: आइए आइए महारानी।
16: हाँ,
15: आपकी कृपा से।

0: आदरणीय माँ शारदा, पूज्य स्वामी जी और उपस्थित बंधु, आप लोगों के आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग से आज ये विद्यालय फिर से खुल सका है। अभी हमारे पास 45 छात्राएं हैं। जल्दी ही हम बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए भी धर्म, दर्शन और सिलाई और कढ़ाई की कक्षाएं प्रारंभ करने की सोच रहे हैं। यदि आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहा तो हमारा ये छोटा सा विद्यालय एक दिन एक बड़ा प्रसिद्ध विद्यापीठ बनेगा और यहाँ से पढ़कर निकलने वाली हर छात्रा एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माँ और सबसे बढ़कर एक अच्छी देशभक्त नागरिक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
1: और निवेदिता का ये विश्वास फूला फला।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्ना सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: सिस्टर निवेदिता, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारे आज के सभी कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। अब आपसे कार्यक्रम को विराम देने की हम आज्ञा चाहेंगे, तो इसीलिए अब अपने मित्र अजीत
1: और उमंग की तकनीकी टीम के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है।

0: इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं अरुण, मुझे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी धरती पे उतरते बादल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने हवा में नमी के बारे में जाना। जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है। ये भाप या नमी हवा की उमस को बढ़ाती है। धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में व हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी धरती।

0: अरे शिक्षी झूठी होते
1: हैं भैया, अभी तो
0: जल
1: गया।
2: तुम तो जग गए हो, फिर अलार्म किस लिए वहाँ बजने के लिए छोड़ दिया तुम लोगों ने?
1: मानव के लिए मम्मी।
2: अलार्म से कहाँ उठने वाला है मानव, उसे तो जब तक चार पांच आवाजें ना लगा उठता ही नहीं है वो।
3: अरे मम्मी, आवाजें तो आप देती होंगी, हम तो बस उसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं और अपने आप उठ जाता है मानव।
2: सृष्टि ये तो बताओ, मानव आज इतनी सुबह क्यों उठ रहा है भला? अभी तो परीक्षा के दिन दूर है ना।
1: अरे मम्मी, आज से मानव भी हमारे साथ सुबह की सैर पर चलेगा।
2: अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। सैर के बहाने मानव सुबह जल्दी तो उठेगा कम से कम,
1: वो भी बिना आवाज लगाए। ओ, लगता है मानव उठाया। देखो
3: लो, वो आ रहा है हमारा मानव।
4: गुड मॉर्निंग मम्मी।
2: गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आज तो कमाल हो गया, मानव बिना किसी के जगाए सिर्फ अलार्म से उठ गया।
4: हाँ मम्मी, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए मैंने अपनी एक आदत बदल दी है।
1: अच्छा किया मानव तूने, नहीं तो अभी विवेक भैया तेरे ऊपर पानी डालने ही वाले थे।
3: पर सृष्टि, लगता है अब हमें फिर कभी मानव को जगाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मानव?
4: हाँ भैया, अब मैं सुबह उठने के लिए आलस नहीं करूँगा।
3: बहुत अच्छे।
2: चलो अच्छा है, एक अच्छी आदत डालने के लिए मानव एक बुरी आदत भी छोड़ना चाहता है।
4: दीदी, पापा नहीं दिख रहे, क्या वो अकेले ही सैर पर निकल गए हैं?
1: नहीं मानव, पापा छत पर प्राणायाम कर रहे हैं, बस आते ही होंगे, हम सभी सैर पर एक साथ चलेंगे।
3: पापा के नीचे आते ही हम सैर पर चल पड़ेंगे।
2: लो आ गए तुम्हारे पापा भी।
4: गुड मॉर्निंग पापा।
5: गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, आज तो मानव भी सैर पर चलने के लिए तैयार है।
4: हाँ पापा, आज से मैं रोज ही आपके साथ सैर पर चलूंगा।
5: वेरी गुड, तो चलो बच्चों चलते हैं पार्क की ओर।
4: चलो, चलो, चलो, चलो।

0: अरे वाह, मजा आ गया भाई।
1: अरे वाह, आज तो ऐसा लगता है जैसे बादल धरती पर ही उतर आए हो।
2: अरे मानव, ये बादल नहीं कोहरा है।
3: हाँ मानव, तू जिसे बादल समझ रहा है वो बादल नहीं कोहरा है।
1: अगर ये कोहरा है तो फिर बादल किसे कहेंगे?
4: मानव, कोहरा और बादल दोनों जल की नन्ही नन्ही बूंदों से बने होते हैं।
5: मानव, और ये जल की नन्ही नन्ही बूंदें हवा के साथ उठती और गिरती रहती हैं।
1: पर ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं?
3: अरे मानव, कोहरे और बादल की ये जल की नन्ही बूंदें वातावरण में उपस्थित भाप से बनती है।
1: लेकिन पापा, मुझे तो बादल और कोहरा एक ही जैसे लग रहे हैं।
4: बेटे मानव, ये एक समान तो नहीं, पर हाँ, तुम कोहरे को धरती की सतह के पास उतर आने वाले बादल भी कह सकते हो।
1: पापा, अगर कोहरा मतलब धरती के पास के बादल, तो बादल और कोहरा समान हुए ना?
4: अब नहीं बेटा मानव, कोहरा अचानक बनता है और तीव्रता से फैलता है। हाँ, कोहरे और बादल दोनों में समानता जरूर है कि ये हवा की नमी से बनते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए मुझे हल्की सी ठंड लग रही है।
2: अच्छा। मानव, ठंड तो लगेगी ही तुझे। सूर्योदय के बाद उठने वाला यदि सुबह 5 बजे सैर पर निकल जाए तो उसे तो अच्छा खासा मौसम भी ठंडा लगेगा।
1: अच्छा दीदी, मेरी तो तुम छोड़ ही दो। आपको तो 12 महीने ठंड लगती है, तभी तो रोज गर्म पानी से जो नहाती हो।
5: भाई मानव, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, पर हाँ, इस कोहरे के कारण मुझे दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आ रही।
3: मम्मी आप ठीक कह रही हैं। कोहरे के कारण हमारी आँखों को दूर स्थित वस्तुओं को साफ देखने में मुश्किल होती है।
4: हाँ भाई, कोहरा छाने से लोगों की देखने की क्षमता यानी विजिबिलिटी कम हो जाती है।
2: हाँ, कोहरा छाने पर हमारी देखने की क्षमता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, ऐसा मैंने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था।
1: अच्छा तो दीदी, और क्या क्या पढ़ा है आपने कोहरे के बारे में?
2: यही कि कोहरा जब अधिक सघन हो जाता है तो धुंध कहलाता है।
1: धुंध? भला ये क्या बला है? गेहूं में घुन के बारे में तो मैंने सुना है, पर ये धुंध क्या होता है?
5: अरे मानव, ये धुंध है धुंध, गेहूं की घुन नहीं।
3: मानव, धुंध और कोहरे को तुम भाई भाई भी कह सकते हो, जैसे तुम और मैं।
1: मैं कुछ समझा नहीं भैया।
4: मानव, कोहरे की तुलना में धुंध में जल की नन्ही बूंदों की संख्या अधिक होती है। या यूं भी कह सकते हो कि सघन हो जाने पर कोहरा ही धुंध में बदल जाता है। और बच्चों, अब देखो, आज तो बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम पार्क तक पहुंच भी गए।
1: चलो, अच्छा हुआ पार्क इतनी जल्दी आ गया, मुझे तो चलते चलते बड़ी थकान हो गई थी।
4: हाँ, आदत
1: तो
4: नहीं है ना,
1: बैठने का मौका तो मिल ही जाएगा।
5: अरे मानव, पार्क में तुम आराम से बैठ भी सकते हो, बैठ जाओ।
1: पापा, वो देखो घास पर मोती। अरे वाह।
4: बेटा ये मोती नहीं, ओस है।
5: हाँ मानव, घास पर दिखाई देने वाले ये मोती ओस की बूंदे हैं।
1: ओस की बूंदे, और वो भी इतनी चमकीली?
2: हाँ मानव, ये ओस ही है जो सूर्य की किरणों से मोती जैसी चमक रही है।
3: और मानव, इन ओस की बूंदों के पीछे भी हवा में समाई नमी की ही कहानी है।
1: अच्छा, तो भैया ये ओस भी जल की भाप यानी नमी का ही एक रूप है ना?
3: हाँ मानव, ओस भी पानी का ही बस एक और रूप है।
2: पानी का ही रूप है ओस, पर इतना सुंदर मानो मोती। तब तो अच्छा ही है दीदी, पापा की जेब हल्की होने से तो बची जाएगी।
5: अरे मानव, ओस के बीच में पापा की जेब कहाँ से आ गई अब?
1: मम्मी, दीदी आपसे बहुत दिनों से मोती के हार की जिद कर रही थी ना?
5: हाँ कर तो रही थी, तो क्या?
1: अरे मम्मी, क्यों ना दीदी को इन मोती जैसी ओस की बूंदों का हार ही दे दिया जाए, इससे पापा के पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे। क्यों दीदी?
5: मानव, इन मोतियों का हार तुम ही पहनो।
3: वैसे भी मानव, ये ओस के मोती मानव के नहीं बल्कि हमारी धरती के आभूषण है, इन्हें हम क्यों ले?
4: हाँ मानव, विवेक सही कह रहा है, हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए धरती की सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहिए।
5: वैसे मानव, बहुत आराम कर लिया ना पार्क में आकर तुमने, अब घर की ओर चलें?
1: चलो
0: चलो चलो भाई, चलो जल्दी।
1: पापा, लगता है कोहरा छटने लगा है।
4: हाँ बेटा, धीरे धीरे देखो कोहरा कम होने लगा है।
3: मानव, दिन चढ़ने के साथ साथ हवा के गर्म होने पर कोहरा कम हो जाता है।
2: विवेक भैया, दिन चढ़ने के साथ साथ वाहनों की हलचल भी तो बढ़ने लगी है।
5: कुछ समय बाद वाहनों के शोर में पक्षियों के चहचहाने की आवाज दब जाएगी और सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ही सुनाई देगी। हाँ,
4: शोर ही नहीं, साथ में वाहनों से निकला धुआं भी प्रकृति की सुंदरता को ग्रहण लगाएगा।
2: और पापा, ये धुआं कोहरे के साथ मिलकर स्मोक को जन्म देता है। अरे दीदी, मैंने स्मोक तो सुना है, पर ये स्मोक क्या है?
5: मानव, स्मोक कोहरा ही है, लेकिन इसमें धुएं की मात्रा बहुत अधिक होती है।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, स्मोक में कारखानों, वाहनों और आग लगने की घटना से निकला हुआ धुआं जल की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ मिल जाता है।
2: इस स्मॉग में विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो भैया, स्मॉग में देखने की क्षमता कोहरे से भी कम हो जाती है?
3: हाँ मानव, लेकिन स्मॉग कोहरे की अपेक्षा अधिक हानिकारक है।
2: वो क्यों? मानव, स्मॉग में धुएं की अधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तब तो ये स्मॉग बहुत खतरनाक हुआ।
3: हाँ मानव, स्मॉग इंसानों और पेड़ पौधों दोनों के लिए बहुत बुरा है।
4: बच्चों, कोहरे की तुलना में स्मॉग बहुत दिनों तक छाया रहता है।
2: हाँ, यदि हवा में धुएं की मात्रा बहुत अधिक हो तो स्मॉग लंबे समय तक छाया रहता है।
3: और स्मॉग की वजह से रोड एक्सीडेंट भी होते हैं।
2: स्मॉग से विजिबिलिटी जो कम हो जाती है।
5: क्या बच्चों, सुबह सुबह एक्सीडेंट की बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। हाँ, ये समय तो प्रकृति की सुंदरता को निहारने का है।
3: हाँ मम्मी, धरती की सुंदरता के साथ आकाश की लालिमा भी मनमोहक लग रही है।
2: सच, आसमान से धरती तक छाई सूर्य की लालिमा और पक्षियों का कलरव बड़ा मनभावन है।
1: हाँ, तो दीदी तुम यहीं पर बैठ के यहाँ की लालिमा को देखो और मैं अकेले ही टीवी देख लूंगा, ठीक है?
2: चलो चलो चलो चलो,
5: लड़ाई करने से बाज नहीं आते तुम लोग, चलो।
2: आज की सैर काफी अच्छी रही है ना, समय का पता ही नहीं चला।
3: और मानव, तुम्हें कैसा लगा आज?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया, अब तो मैं रोज आप सबके साथ सैर पर जाया करूँगा।
5: हाँ, अब हमारे मानव ने जल्दी उठना जो सीख लिया है।
2: वो भी आपके बगैर मम्मी।
5: मतलब
2: पहले मानव को जगाने के लिए आपको उसे 3-4 बार आवाज देनी पड़ती थी, अब मानव अपने आप उठने की आदत डाल रहा है। मम्मी
1: मम्मी, वो तो ठीक है, पर पापा फोन पे किससे बातें कर रहे हैं?
2: अरे मानव, ये तो पापा ही बता सकते हैं ना, भला मम्मी को क्या पता कि पापा किसके साथ बात कर रहे हैं।
4: अरे भाई, अभी अभी मेरे कानपुर वाले दोस्त राजीव का फोन आया है, वो बस अभी 8 बजे की ट्रेन से आ रहा है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है।
1: हाँ। तो पापा, राजीव अंकल वही है ना जो कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में साइंस टीचर है?
4: हाँ, लेकिन बेटे उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना होगा, उन्होंने हमारा ये नया घर अभी तक देखा नहीं है ना।
3: तो इसमें क्या परेशानी है पापा, उन्हें लेने हम चले जाते, आप आराम से अपने ऑफिस जाइए।
4: पक्का?
3: पक्का।
4: अब तो ठीक है विवेक, और तुम मानो तुम भी दोनों जने साथ चले जाना, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना ट्रेन ठीक 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाएगी।
1: अरे वाह, आज तो दिन भर बाहर घूमने का प्रोग्राम
3: है। मानव तेरे तो मजे। अच्छा मम्मी, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं फिर।
5: हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान से जाना बेटा। हाँ।
1: जल्दी चलो ना।
4: चलो भाई,
5: मानव ध्यान से।

0: ना मेरे साथ
1: राजीव अंकल।
2: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते नमस्ते बच्चों, और घर पर सब ठीक ठाक है?
2: हाँ अंकल, घर पे सब कुछ ठीक है।
1: अंकल फटाफट घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ।
2: आइए अंकल आप मेरे साथ।
3: चलो भाई। भाई बच्चों, यहाँ का मौसम तो काफी अच्छा है।
1: यहाँ अच्छा है अंकल, हल्का हल्का फॉग यानी कोहरा नजर आ रहा है।
2: अंकल कहीं ये कोहरा स्मॉग में तो नहीं बदल जाएगा ना?
3: अरे वाह, मानव तो बहुत कुछ जानता है। पर मानव यहाँ इतना प्रदूषण थोड़ी है।
1: अंकल स्मॉग ना सही, लेकिन ये अन्य कोहरे में तो बदल सकता है।
3: हाँ विवेक, मौसम के हिसाब से अब विकिरण फॉग यानी रेडिएशन कोहरा तो बन सकता है, क्योंकि ये रात के समय आकाश के साफ होने पर ही बनता है।
2: अच्छा, तो अंकल इस कोहरे को भी साफ सफाई पसंद है। साफ आसमान होने पर ही विकिरण कोहरा बनता है। पर ये विकिरण कोहरा बनता कैसे है?
3: मानव ये कोहरा धरती का तापमान कम होने पर बनता है, और हाँ विकिरण कोहरा कभी भी पानी की सतह पर नहीं बनता। हाँ विवेक, तुम अन्य प्रकार के कोहरों के बारे में जानते हो?
1: जी अंकल। अंकल मैंने एडविक्शन यानी अभिवाहन कोहरे के बारे में भी सुना है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए।
3: हाँ विवेक बिल्कुल, एडविक्शन या अभिवहन कोहरा उस समय बनता है जब कोष्ण और नम ठंडी हवा धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
1: अच्छा।
3: हाँ कभी कभी ये कोहरा पहले से बने कोहरे के स्थानांतरित होने पर बनता है।
2: तो आपका मतलब ये है कि एडविक्शन कोहरा दूसरों का स्थान हथिया लेता है?
3: बिल्कुल।
1: हाँ ये तो ऐसा ही हुआ, एक कोहरा खत्म हुआ तो दूसरा हाजिर।
2: अंकल क्या कोहरा समुद्र के ऊपर भी छाता है?
3: देखो मानव बेटा, सागर की सतह के ऊपर भी कोहरा छाता है, जिसे समुद्री कोहरा या समुद्री धुआं भी कहा जाता है।
1: अरे मानव, तू तो कोहरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गया।
3: अरे अच्छा ही है ना विवेक, मानव की कोहरे के प्रति जिज्ञासा से मुझे भी अपने स्कूल के छात्रों की याद आ गई। अरे भाई वो भी मुझसे इतने ही प्रश्न पूछते
2: हैं। देखा?
1: अंकल घर आ गया।
3: हाँ।
1: देखिए।
3: अरे बेटे घर आप लोग ने चेंज किया?
1: जी अंकल, आइए आइए।
4: नमस्ते भाई साहब।
3: नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
4: आप बताइए सफर कैसा रहा?
3: अब रेल का सफर तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन भाभी ये विवेक और मानव के साथ रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का सफर काफी अच्छा है। हाँ।
4: विवेक अंकल को कमरे में ले चलो
1: जी,
4: तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
1: आइए अंकल।
3: हाँ चलो बेटा।
5: बेटा ये सामान यहाँ
1: जी।
2: दीदी क्यों ना हम भी राजीव अंकल के पास चले?
4: चलो मानव
2: चलो।
3: अरे आओ बच्चों, आओ आओ आओ।
2: अंकल। हाँ? विवेक भैया कहाँ गए हैं?
3: मानव वो मेरे लिए पानी लेने गया है।
2: ओ।
3: वैसे अभी तुम्हारी ही बातें कर रहा था।
2: मेरी बातें?
3: हाँ विवेक बता रहा था कि आज मानव भी पहली बार सुबह सैर के लिए गया था। अच्छा मानव ये बताओ कि आज सुबह की सैर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा?
2: मुझे तो धरती के पास के बादल बहुत अच्छे लगे।
1: लीजिए अंकल पानी।
3: अरे थैंक यू विवेक बेटा। अच्छा मानव तो सुबह तुमने कोहरा देखा?
4: हाँ अंकल, कोहरे को ही मानव धरती के समीप वाले बादल कह रहा था।
3: बच्चों तुम्हें ये पता है कि लगभग हर समय पृथ्वी का आधा भाग बादलों से घिरा रहता है?
2: अरे वाह, ये तो हमारे लिए एक नई जानकारी है।
3: बच्चों बादलों की तो कई बातें अनोखी हैं।
2: आप

0: कौन से बादलों की बात कर रहे हैं अंकल?
1: मैं उन सभी बादलों की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो धरती की सतह से लेकर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक पाए जाते हैं।
0: अंकल, पृथ्वी पर ये बादल वायुमंडल की नमी के संघनन के कारण बनते हैं ना?
1: देखो सृष्टि, जब नम हवा ऊपर उठने के दौरान फैलती है तो ये ठंडी भी होने लगती है,
2: और इस प्रकार बादलों में जल की बहुत छोटी छोटी बूंदें बन जाती
1: हैं। बिल्कुल।
0: पर भैया, ये जल की बूंदें आसमान में स्थिर कैसे रह पाती हैं?
2: मानव, ये जल की बूंदें स्थिर नहीं होती बल्कि हवा के साथ तैरती रहती हैं।
1: हाँ बच्चों, बादलों की नन्ही जल की बूंदें हवा के प्रतिरोध के कारण धरती पर नहीं गिरती,
0: और जब इन नन्ही जल बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है तब ये बारिश बन बरसती हैं।
2: बिल्कुल।
0: इसका मतलब बादल ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो मानव तुम।
0: मगर अंकल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही।
1: कौन सी बात बेटा?
0: ये तो मुझे समझ में आ गया कि बिन बादल बरसात नहीं होती, लेकिन फिर बिना बरसात बादल क्यों होते हैं?
3: वाह मानव, अच्छा सवाल किया तुमने।
1: मानव, ये तो तुम समझ ही गए कि सभी बादल वर्षा नहीं करते।
0: हाँ अंकल।
1: तो ये बात और जान लो कि बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, फिर प्रत्येक वर्ग में भी बादलों के अन्य प्रकार हैं। इस तरह से वैज्ञानिक 9-10 प्रकार के बादलों का अध्ययन करते हैं।
0: ठीक वैसे ही ना अंकल, जैसे गेहूं तो एक अन्न है लेकिन सुजाता, लोकवान, पूसा गेहूं की किस्में हैं।
1: अरे वाह बेटा वाह, वेरी गुड।
2: सृष्टि, इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक बादलों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई के अनुसार, जैसे उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल और निम्न स्तरीय बादलों के रूप में करते हैं। तो कुछ लोग बादलों का अध्ययन धरती से दिखाई देने वाली बादलों की आकृति के अनुसार करते हैं। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। देखो मुख्यतः बादल तीन प्रकार के होते हैं, पक्षाप बादल, स्तरी बादल और कपासी बादल।
2: और मानव, पक्षाप बादल यानी सीरस क्लाउड को उच्च स्तरीय बादल भी कहा जाता है।
0: अंकल, पक्षाप बादलों में हिमकण भी होते हैं क्या?
1: सृष्टि बेटा, पक्षाप बादल जल बूंदों व हिमकण दोनों से बने होते हैं। इन बादलों की ऊंचाई धरती से 5 से लेकर 14-15 किलोमीटर तक होती है। श्वेत रंग वाले पक्षाप बादलों की संरचना समानांतर लहरों की भांति होती है, और बच्चों आमतौर पर पंक्तिबद्ध या समूह रूप वाले पक्षाप बादल आकाश का अधिकांश भाग घेरे रहते हैं।
0: अंकल, पक्षाप बादल के और भी उपवर्ग है ना?
1: देखो मानव, पक्षाप बादलों के समूह में पक्षाप कपासी और पक्षाप स्तरी बादल आते हैं, और बच्चों पक्षाप स्तरी बादल तो तूफान का द्योतक होते हैं।
0: तो क्या अलग अलग बादलों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं?
1: हाँ बेटी, इस भिन्नता के कारण ही तो इनको अलग वर्ग में रखा गया है।
2: और सृष्टि जानती हो, स्तरी या स्ट्राटस बादल तो पक्षाप बादलों के नीचे स्थित होते हैं।
0: फिर तो जरूर इन्हें मध्यम स्तरीय बादलों की श्रेणी में रखा गया होगा।
1: बिल्कुल मानव, स्तरीय बादलों की ऊंचाई धरती से 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक होती है। हल्के भूरे और श्वेताभ रंग के ये स्तरी बादल मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। बरसते समय इन स्तरी बादलों का रंग गहरा भूरा हो जाता है, और कभी स्तरी बादल आकाश में धुनी हुई रुई के समान भी दिखाई देते हैं।
2: अच्छा
0: अंकल, स्तरी बादल कितने प्रकार के होते हैं?
1: देखो मानव बेटा, स्तरी बादल तीन प्रकार के होते हैं, जो मध्य कपासी, मध्य स्तरी और वर्षा स्तरी बादलों के नाम से जाने जाते हैं। और बच्चों, तीसरे वर्ग में फूल गोभी के समान दिखाई देने वाले कपासी या क्यूमुलस बादल आते हैं।
2: और मानव जानते हो, झुंड में रहने वाले इन कपासी बादलों को आकाश में ब्लैक एंड व्हाइट रंग में देखा जा सकता है।
0: क्या भैया, बादल भी श्वेत श्याम रंग के होते हैं? अभी तक तो मैंने सिर्फ श्वेत श्याम रंग का टेलीविजन ही सुना था।
1: अरे बच्चों, ये कपासी बादल ऊंचे स्थानों पर तो कोहरे का आभास देते हैं।
0: अच्छा, तो अंकल, कपासी बादल धरती के सबसे समीप बादल हुए।
1: हाँ माना बेटा, और इन बादलों को भी मुख्यतः तीन उपवर्गों में, स्तरी कपासी बादल और कपासी वर्षी बादल में बांटा गया है।
2: अंकल, मैंने कहीं पढ़ा है कि हिमपात और टोर्नेडो की घटनाएं कपासी वर्षी बादलों से होती है।
1: विवेक, हिमपात व टोर्नेडो के साथ ही बिजली चमकने की घटना भी कपासी वर्षी बादलों से होती है।
2: अच्छा
0: अंकल, जब मैं छोटा था तो ये समझता था कि भगवान बिजली चमकाकर ये देखते हैं कि कौन कौन भीगने से बच गया है।
1: ये मानव भी।
0: अच्छा तो मानव,
3: अब जब बिजली चमकती है तब तुम्हें क्या समझ आता है?
0: दीदी, एक दिन बिजली चमकने की सच्चाई मुझे विवेक भैया से पता चली कि बादलों से विद्युत विसर्जन से बिजली चमकती है, जो कि बादलों में उत्पन्न विपरीत आवेश के कारण होता है।
1: बिल्कुल ठीक।
2: और मानव, विद्युत का चमकना एक घटना ना होकर कई घटनाओं का एक जटिल क्रम होता है।
1: अच्छा बच्चों, तुम्हें बादलों से संबंधित अगर कोई मुहावरा याद हो तो मुझे बताओ।
0: हाँ अंकल, बादल से संबंधित मुझे एक मुहावरा याद है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है।
1: वाह मानव वाह, वेरी गुड। यही मुहावरा तो मैं सुनना चाहता था।
0: हाँ अंकल, ऐसा क्या खास है इस मुहावरे में?
1: मुहावरे में नहीं बेटा, बल्कि मुहावरे में छिपे बादलों की गड़गड़ाहट में विशेष बात है। देखो बच्चों, गरजने वाले बादल बरसें भी ये जरूरी नहीं, और बारिश तो तभी होती है जब बादलों में पानी की बूंदों का आकार बरसने लायक हो जाए।
0: हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये बादल गरजते क्यों हैं?
1: बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ बादलों के गरजने का राज। देखो, बादलों से विद्युत विसर्जन होने पर जब समीप की हवा बहुत अधिक गर्म होकर तेजी से चारों ओर फैलती हुई आसपास की ठंडी हवा से टकराती है, तब जो गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है उसे ही बादलों का गरजना कहा जाता है।
2: अच्छा,
0: लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज तो विद्युत चमक के काफी देर बाद सुनाई देती है।
2: वो इसलिए मानव कि प्रकाश की गति की तुलना में ध्वनि की गति काफी कम होती है, इसी कारण हमें पहले विद्युत की चमक दिखाई देती है और फिर बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है।
1: अरे वाह विवेक वाह, एक्सीलेंट। बच्चों विवेक की सही जानकारी के लिए क्यों ना तालियों की गड़गड़ाहट।
4: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 22वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती पे उतरते बादल।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सन बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: गगन कोकरी फतेह।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रही नी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ब्रेक
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर

आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। अगर

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: साथ हेल्थ की में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University. Solo Sharda.
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
6: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
7: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: व्हाट इज दिस शिट? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेफ, इट रियली हर्ट्स।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो याए शहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: भाई पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बार बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना, यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे। खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक है स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है. हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो. अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें.
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.